0: अपने घर को छोड़ने से पहले अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को अच्छी तरह बंद कर लें, और अगर सिक्योरिटी अलार्म मौजूद है तो इसे भी ऑन कर दें और तसल्ली कर लें कि आपका घर चोरों से महफूज है। इंस्पायर FM कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
1: I have

0: From the heart of Bedfordshire in Luton, you are listening to Inspire FM on 105.1 FM.
1: आजकल लोग सड़कों पर चलते फिरते चोरी के मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैमरा और इस तरह की मुख्तलिफ चीजें फरोख्त करते हैं। चोरी की चीजें खरीदने का मतलब आप इस चोरी में शामिल हैं। इसलिए चलते फिरते लोगों से चीजें हरगिज ना खरीदें, बल्कि ऐसे अफराद के बारे में पुलिस को आगाह करें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
2: I have

कि वो दूसरे को उसकी गलती भी बताए। अगर वो नहीं बताएगा तो इसलाह कब करेगा। सबसे ज्यादा मोहब्बत और हमदर्दी किसी से क्या हो सकती है कि उसकी गलती उसको बताई जाए। तुमने अपनी जान पे जुल्म किया, कैसे? बित्तिखाज़िकुमुल इजला, बवजह बछड़े को माबूद बनाने के, बछड़े को खुदा बना के जुल्म किया। इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, फतूबु इला बारिकुम। तो इलाज क्या है, अब क्या करो? अपने रब से तौबा करो। अच्छा, यहाँ ये नहीं कहा तूबु इला रब्बिकुम, कहा तूबु इला बारिकुम। देखो, तुम्हारा पैदा करने वाला कौन था? वो जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें उसकी इबादत करनी चाहिए थी, और जिसको तुमने खुद बना लिया बछड़े को, उसकी तुम इबादत में लग गए हो, तुम्हारी अकल पलट गई है। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, लेकिन इस बड़े गुनाह का कफारा, एक्सपिएशन क्या है? अपने आप को कत्ल करो। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला वैसे ही माफ़ कर देते, छोटे मोटे। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि जिनका कफारा देना पड़ता है। तो यहाँ शिर्क के गुनाह का कफारा क्या? कत्ल करो। अनफुसकुम, अपने आप को। अपने आप से मुराद यहाँ खुदकुशी का हुक्म नहीं दिया जा रहा कि अपने आप को कत्ल करो यानी खुदकुशी करो, नहीं। उन्हें हुक्म यह दिया गया था कि यानी सब के सब असलियाँ उठाएं और एक दूसरे को मारें, बाप बेटे को, बेटा माँ को, बच्चों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को। सोचिए हाल क्या होगा, कि आसान काम नहीं है। जब ऐसा होने लगा तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब के आगे फरियादें करने लगे, या रब मेरी कौम ख़त्म हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने फिर यह हुक्म उठा लिया और उनका असलह उनसे गिर पड़ा। जो बछड़ा बनाया गया था उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि इसको रेजा रेजा करूँगा, फिर उसको जला दूंगा और फिर उसको पानी में बहा दूंगा। तो वो जो बछड़ा बनाया गया था उसको तो तोड़ फोड़ के ख़त्म कर दिया गया, लेकिन इनकी तौबा के लिए ये जो अल्फाज हैं बिल्कुल वाज़े हैं कि अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, तूबु इला बारिकुम फ़क्तुलू अनफुसकुम। अनफुस नफ्स की जमा है, नफ्स जान को कहते हैं, बुत में जान नहीं होती। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारिकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से, यानी तौबा के लिए ये करना होगा। फताबा अलैकुम, तो वो मेहरबान हुआ तुम पर। देखिए, जैसे कोई किसी को कत्ल कर दे तो उसका कफारा क्या है, आगे पढ़ेंगे आप कुरान मजीद, ठीक है ना? लेकिन यहाँ अल्लाह के हुक्म ही से कत्ल करना था। देखिए, बाज़ औक़ात इंसान का जुर्म इतना बड़ा होता है कि उसके लिए इंसान को एक बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ता। ये भी एक आजमाइश थी उनके लिए, क्या? अपने प्यारों को कत्ल करना, क्योंकि जुर्म बड़ा था ना। तो बहरहाल, यानी कि ख्वाब वो तुम्हारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो। इससे बाज़ मुफस्सरीन ने यह कहा है कि जो मुजरिम थे उन्हें कत्ल किया उन्होंने जो बच गए थे, और बाज़ ने कहा कि वो तो एक तरफ थे और ये जो मुजरिम थे यही एक दूसरे को मार रहे थे। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है, बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है। तौबा जो है उस वक्त कबूल होती है जब इंसान की तौबा की नीयत हो। तो पहली शर्त यह कि नीयत खालिस हो तौबा की, सिर्फ टल टलाव ना हो, काम चलाओ ना हो। दूसरी बात यह है कि गुनाह छोड़ दे इंसान, उस पर नदामत हो। तीसरी बात यह कि आइंदा ना करने का इरादा हो। फिर यह कि जो गलती की उसको कंपनसेट करे, किसी का हक मारा है तो उसको दे। और तौबा कबूल होती है मौत का फरिश्ता देखने से पहले तक। किसी को मौत का फरिश्ता नजर आते फिर तौबा नहीं कबूल होती, जैसे फिरौन ने भी तौबा की थी, लेकिन कब की थी? जब वो डूब के मरने लगा था, उसने कहा था वाना मिनल मुस्लिमीन, मैं भी मुसलमान हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अब तुम मुसलमान होते हो, हालांकि इससे पहले तुम इस्लाम नहीं लाए। तो बहरहाल, बात यह है कि इस आयत से हमें यह पता चलता है कि बाज़ गुनाह बहुत बड़ा जुल्म होते हैं, और जुल्म का फिर बदला इंसान को देना होता है, और बाज़ गुनाहों की माफ़ी सिर्फ उस सूरत में मिलती है जब इंसान उनका कफ़ारा अदा करे। वो कफ़ारा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होता है। बनी इसराइल के लिए कफ़ारा कत्ले नफ्स था, लेकिन हमारे लिए मुख्तलिफ गुनाहों का कफ़ारा हमें बता दिया गया। जैसे कोई कसम खा के तोड़े तो उसका कफ़ारा क्या है, अगर कोई रोज़ा तोड़ दे तो कफ़ारा क्या है, ये वक्त के साथ साथ आगे आप सीखेंगे। वैसकुल तुम या मूसा लन्नो मिन लका हत्ता नर अल्लाह जहरतन, जब तुमने कहा ऐ मूसा हम तुम्हारा एतबार नहीं करते जब तक कि हम खुद अल्लाह को सामने न देखें। हुआ यह कि मूसा अलैहिस्सलाम जब किताब लेकर आए तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की किताब है, तो कौम ने कहा हम नहीं मानते जब तक हम खुद ना अल्लाह को देख लें। फअखज़तकुमुस्साइक़तु, उस पर अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हुआ और उन पर
तुम्हें बिजली ने पकड़ा। चमक और कड़क के साथ बिजली उन पर गिरी। वन तुम तंजरून, और तुम देख रहे थे क्या कि वो आ रही है बिजली, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले चमक होती है और उसके बाद गरज होती है और फिर वो गिरती है। तो यहाँ क्या देख रहे थे तुम? बिजली का चमकना और फिर उसके बाद कड़की और गिरी और वो सारे मर गए। वह अंतुम तंजरून। बाज रिवायात में ये भी आता है, बाज लोगों ने इसकी ये भी तफसीर की है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की मुलाकात के लिए गए तो वापस आए किताब लेके, तो कौम ने कहा हम भी सुनना चाहते हैं आपने अल्लाह से कैसे बात की, हमें भी साथ ले चले। 70 लोगों को चुना, कोहितूर पे ले गए, वहाँ जा कहने लगे नहीं नहीं हमें तो अल्लाह को देखना है। उस पर इनकी शामत आई। तो इस आयत से ये बात पता चलती है कि नाजायज़ मुतालबात पैगंबर से और अल्लाह से बसा औकात इंसान को मुसीबत में मुबतला करते हैं। तो पीछे हम पढ़ रहे थे ना कि इंसान पर मुसीबतें क्यों आती हैं, फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से। तो ये इस तरह के जो सवाल और मुतालबे थे ये मुसीबत का बायस बने। अब मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए कि ऐ रब ये क्या बनेगा। सूरत अल आराफ 155 में आता है, ऐ अल्लाह अगर तेरी ये मशीयत थी तो आज से पहले मुझे भी और इन्हें भी हलाक कर देता। क्या आज तू इन नादान लोगों की बातों पर हमें हलाक करता है, यानी तू हमें ना हलाक कर इनको उठा दे। सुम्मा बासनाकुम मिन बादे मौतिकुम, ये कितना बड़ा इनाम है कि हमने तुम्हारे मरने के बाद तुमको दोबारा उठाया। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। ये नींद नहीं थी उनकी या बेहोशी नहीं थी, वो वाकई मर गए थे। मौत मौत ही के लिए आता है, मौत नींद के लिए नहीं आता। और ये सब किस लिए नेमत याद कराई जा रही है? ताकि तुम शुक्र अदा करो। इससे ये पता चलता है कि इंसान अगर किसी ऐसी बीमारी या आफत या हादसे या मुसीबत से निकले तो उसे क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। वज़ल्लना अलैकुमुल ग़मामा, और साया किया हमने तुम पर बादलों का। ग़माम इस्म जिन्स है, एक बादल नहीं कई बादल, क्योंकि एक बादल का साया नहीं होता। वअंज़ल्ना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा, और उतारा हमने तुम पर मन और सलवा। मन और सलवा ग़िज़ा के तौर पर। यह कहाँ उतारा? सहराए सीना में। अब समझ में आ रहा है ना कि जब फिरौन से निकल कर वो दश्त सीना में गए तो वहाँ कुछ खाने को नहीं था, कई हज़ार लोग थे, ना वहाँ कुछ उगता था, ना ही वहाँ पानी था, ना कोई मकान थे। एक नहीं दो नहीं 70,000 लोग किसी मैदान में पहुँच जाएँ तो वो क्या करेंगे? तो उस पर अल्लाह ने इन पर बहुत इनाम और एहसान किया, और वो क्या था कि उन पर बादलों का साया किया और मन व सलवा खाने को दिया। और क्या फरमाया? कुलू खाओ, मिन तय्यबात मा रज़क़नाकुम, पाकीज़ा चीज़ें जो हमने तुमको रिस्क दी हैं, अच्छी चीज़ें, उम्दा चीज़ें। क्या थी ये अच्छी चीज़ें? मन और सलवा, जो देखने में टेस्ट में जायके में अच्छा था। वमा ज़लमूना, उन्होंने हम पे जुल्म नहीं किया। किसने? बनी इसराइल ने। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो अपनी जानों पर जुल्म करते थे। किस तरह? कैसे? शुक्र ना करके, ना शुक्री करके। इस आयत से भी क्या पता चलता है कि अल्लाह चाहे तो सहरा में बादल भेज के साया कर दे, यानी जब अल्लाह किसी पर इनाम करना चाहता है तो वो ऐसी जगह भी उसकी मदद करता है जहां बज़ाहिर कोई असबाब और वसाइल ना हो। जितने भी एहसान बनी इसराइल पे, इन सब में आप एक ही बात देख रहे हैं ना कि अल्लाह ताला इनकी ऐसे तरीक़ों से मदद करता है कि जो आम असबाब के तरीके नहीं हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर अपने लिए शहद को हराम किया था, तो अल्लाह सुबहानु ताला ने आयत उतारी थी, या अय्युह नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ऐ पैगंबर आप उन चीज़ों को क्यों हराम करते हैं जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल करार दी हैं, तो उनको हराम नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई शरई उज़र हो तो फिर हो सकता है। मसलन एक मौके पर जब कहत पड़ा था तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हर चीज़ खानी छोड़ दी थी, सिर्फ रोटी को तेल में डुबो के खा लेते थे, हती कि उनका रंग स्याह हो गया था। लोग कहते कि आप क्यों नहीं खाते, तो कहते थे कि अगर मैं खाऊं और मेरी रियाया न खाए मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि ये भूखे मर रहे हैं और मैं अच्छी चीज़ें खा रहा हूं। तो ऐसे मौके पर अपने आप को महरूम करना इसलिए कि औरों के पास कुछ नहीं, वो एक वजह है, लेकिन बिला वजह सब खा रहे हैं और आप नहीं खा रहे सिर्फ ये सोच के मैं ज़्यादा नेक हूँ, ये कोई नेकी और तकवा नहीं है। लेकिन बहरहाल खाने में इतदाल अपनी जगह है, वो ज़रूरी है। वह इस कुलनत खुलू हाजिल करियत, और जब हमने कहा इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, फ़कुलू मिनहा हई

जदन, बस एक काम करना कि दरवाजे से गुजरते हुए सर झुका के गुजरना। अब सुजदन से यहां मुराद आजजी है, यानी शुक्रगुजार होते हुए और आजजी के साथ दाखिल होना। वकूलू और कहो, कुल की जमा है कूलू, हित्ततुन बख्श दे, और जबान तुम्हारी इस्तिग़फ़ार कर रही हो, कहना कि अल्लाह हमसे हमारे गुनाहों के बोझ उतार दे। नग़फ़िर लकुम ख़ताया, पिछली सारी ख़ताएँ माफ़ कर देंगे हम तुम्हारी। वसा नज़ीदुल मुहसिनीन, और हम मुहसिनीन को और ज़्यादा देंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने हित्तत उनको बदल दिया और मजाक उड़ाने लगे और कुछ और कहने लगे। बहरहाल इस आयत से हमें कुछ बातें पता चलती हैं, और वो क्या, नंबर एक, अल्लाह ने किसी मुल्क और शहर का खाना हराम नहीं किया। कि हम ये कहें कि नहीं, ये तो फला का मुल्क है लिहाजा यहाँ से कुछ ख़रीदना नहीं चाहिए और इसका बायकॉट करना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए और वो नहीं लेना चाहिए। नहीं, जब तक कोई शरई उज़र ना हो, इंसान को अपने ऊपर किसी इलाके का खाना हराम नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि रगदन का लफ्ज़ जो है, इसमें दो चीज़ें आती, एक इत्मीनान भी आता है, नहीं इत्मीनान से खाना, और दूसरे मर्जी से खाना और बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी झिझक के। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो वैसे खूब खा लेते हैं लेकिन जब किसी के सामने हो तो कुछ नहीं खाते। वदखुलुल बाब सुज्जदन, एक और बात ये पता चलती है कि खाना मना नहीं है, हाँ खाने के बाद शुक्र अदा करना ज़रूरी है, नमाज ज़रूरी है। बाज़ लोग खाना पकाने में और खाने में फिर इतने मशगूल हो जाते हैं कि सजदा भूल जाते हैं। तो इंसान को बैलेंस करना चाहिए जिस्म के तकाज़ों के साथ, और क्या करना चाहिए, रूह के तकाज़े भी याद रखने चाहिए। तीसरी बात जो ख़ास तौर पर इस कॉन्टेक्स्ट में समझ आती है, वो ये है कि जब अल्लाह किसी को कामयाबी नसीब करे, फतह नसीब करे, तो फातह को आजजी का इजहार करना चाहिए। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मिशन मुकम्मल हो गया तो अल्लाह सुबहान व तआला ने क्या हुक्म दिया, इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह व रअयता अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहमदि रब्बिका वस्तग़फिरहु। और एक और बात यह कि कभी इंसान को अपनी कामयाबी पर यह नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मैं बहुत नेक हूँ, बहुत अच्छा हूँ इसलिए मुझे ये मिला। उस मौके पर भी क्या याद रखना चाहिए, इस्तग़फार, कि या अल्लाह मुझे अपने गुनाहों का एहसास है, मेरी गलतियाँ माफ़ कर दे। नग़फिर लकुम ख़तायाकुम, हम तुम्हारी गलतियाँ माफ़ कर देंगे, और सिर्फ गलतियाँ ही नहीं माफ़ करेंगे, वसा नज़ीदुल मुहसिनीन, जो अच्छा सा काम करेंगे उनको इससे भी ज़्यादा देंगे और भी उन पर रहमतें करेंगे। मुहसिन कौन होता है, वो जो अल्लाह और बंदों के मामले में अच्छा रवैया अख्तियार करे। अल्लाह की इबादत में एहसान क्या है, ऐसे इबादत करो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो, और बंदों पर एहसान क्या है कि उनकी मदद करो खा वो तुम्हारी मदद ना भी करें। लेकिन बनी इसराइल ने क्या किया, फबद्दल अल्लज़ीन ज़लमू क़ौलन, ज़ालिमों ने बात बदल डाली, बात में तब्दीली कर दी, हुक्म बदल दिया। बदला का क्या मतलब है, एक चीज़ की जगह दूसरी ले आना। गैर अल्लज़ी क़ीला लहुम, जो उनसे कहा गया था वो नहीं कहा, क्या कहा गया था, क्या कहो, हिततुन, उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, हिंततुन हिंततुन हिंततुन का क्या माना है, गंदम, मजाक बना लिया। अल्लाह ने फिर क्या किया, फअंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू, उतारा हमने भी उन पर जिन्होंने जुल्म किया क्या, रिज्ज़म मिनस्समा, आसमान से अजाब। हो सकता वो कड़क थी या पत्थर थे या हवा थी या बारिश थी या ओले थे या बर्फ़ थी या खुदा जाने क्या था। बास कहते हैं कि ताऊन था, क्योंकि हदीस में आता है, मुस्लिम की हदीस है, कि ताऊन उसी रिज्ज़ और अजाब का हिस्सा है जो तुमसे पहले बाज़ लोगों पे नाजिल हुआ। तुम्हारी मौजूदगी में किसी जगह ताऊन की वबा फैल जाए तो वहाँ से मत निकलो। अगर किसी इलाके के बारे में तुम्हें पता चले कि वहाँ ताऊन है तो वहाँ मत जाओ। तो ताऊन की बीमारी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ये क्या है, रिज्ज का हिस्सा है जो बनी इसराइल पे जैसे ये नाजिल हुआ। क्यों नाजिल हुआ, बिमा कानू यफसुकून, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, इताअत की हद से बाहर निकल गए। इस आयत से क्या पता चलता है, नंबर एक, कि इंसान को जो बात जैसे कही जाए वैसे ही रखनी चाहिए, अल्लाह की बातों को बदलना नहीं चाहिए। कुरान में तब्दीली और इसी तरह अहकामात में मनमानी तब्दीली नहीं करनी चाहिए, वो जुल्म होता है। दूसरी बात यह है कि कभी भी अल्लाह के एहसानात पर इंसान को बिगड़ना नहीं चाहिए, यह नहीं समझना चाहिए

0: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
1: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं. मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे. ओनली ऑन इंस्पायर FM.
2: हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन. हेलो एंड वेलकम डैलस फोर्ट वर्थ एंड द होल वर्ल्ड लिसनिंग टू रेडियो आजाद वॉइस ऑफ द पीपल. तमाम सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम. अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो. सुन रहे हैं जी आप बोल के लब आजाद हैं तेरे.
1: इसी तरह गफलत का पर्दा होता है, इस तरह जहालत का पर्दा होता है, इग्नोरेंस का. और आप सामने चीज़ें पढ़ी हैं. रिश्तों में आप जब जाहिल का काम कर रहे होते हैं आपको सामने पता चल रहा होता है ये रिश्ता क्रम्बल डाउन कर रहा है, टूट रहा है, आगे नहीं चलेगा, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा होता बिकॉज ये सिंपल साइंस है. आपको जब कोई चीज़ अच्छी लगती है, जब कोई इंसान अच्छा लगता है, कोई मर्द कोई औरत या कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप और सेरोटोनिन और डोपामिन का आपका लेवल इतना हाई हो जाता है उसमें से आपको रेड फ्लैग्स और ख़राबी नज़र आना बंद हो जाती है और आ भी जाए तो आप उसको कवर कर लेते हैं. हालांकि वो सब वही होता है, वही बंदा होता है, लेकिन आप खुद अपने आप को कौन कर लेते हैं. डर इंसान को कौन करके उससे उसकी असल अबिलिटीज़ ले लेता है. क्योंकि अगर वो शैतान क्या करता है, किताब में लिखा हुआ शैतान आपको डरा देता है दिल में वसवसे, व्हाट इफ़ अगर ऐसा ना करता, शायद ऐसा ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. इससे आपके दिमाग की सारी कुव्वत जो है वरिंग जो में आपकी सारे जो पावर्स हैं वो सल्प कर लेता है, उनको ओवरशेडो कर लेता है और उसकी जगह थिंकिंग करने के बजाय आप वरिंग करने लगते हैं और आप पहले से इतने घबराए हुए, कमज़ोर और थके हुए होते हैं, एग्जॉस्टेड होते हैं कि आपको चीज़ें नज़र नहीं आती हैं. असल ऑपरेशन शुरू होगा जब आप इससे बाहर निकलेंगे. देखें, जिस दिन आपने अपने बेसिक फाइनेंसिस कवर कर लिए, थोड़ी सी चीज़ें सेविंग में डाल दें, कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर ली, बस इसके बाद आपने पैसे के बारे में नहीं सोचना. जब आपने इस दिन प्यार मोहब्बत दोस्तियां कर ली, लोगों के साथ आपने टाइम एनर्जी एफर्ट की इन्वेस्टमेंट कर ली, रोज़ फाउंडेशन बनाने के लिए बेवकूफ़ी नहीं करनी, वो फाउंडेशन रख दिए, फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ ट्रेंड हो जाएंगे, फिर आप इन चीज़ों से बाहर निकलकर अगली चीज़ों के बारे में सोचें, फिर क्रिएट करने के बारे में सोचें, गिविंग बैक के बारे में सोचें, किसी चीज़ को इंजॉय करने के बारे में सोचें, लाइफ को एज एन एक्सपीरियंस करने के बारे में और एज एन एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखें तो, और ग्रेटफुल होकर चीज़ों को करने की कोशिश करें बजाय इसके कि मेरे बेसिक्स पूरे. मैंने जिस दिन बेसिक्स अपने मैंने कवर कर लिए थे कि मेरा कितना खर्चा है, मेरे कितने रिश्ते हैं, मेरा मैं ज़िंदगी में चाहता क्या हूँ, ये जब मैंने कर लिए, मैं 30-35 साल का था जब सब कवर हो गया, उसके बाद मैं सोचने की क्वालिटी इम्प्रूव करूँगा, मैं हेल्थ की क्वालिटी इंप्रूव करूंगा, मैं अपनी फिजिकल जो एबिलिटीज़ हैं उसकी क्वालिटी इंप्रूव करूंगा, मैं रिश्ते बने बनाए अच्छे रिश्ते की क्वालिटी इंप्रूव करूंगा, उस पर टाइम लगाऊंगा, चीज़ें करूंगा, उनके लिए कुछ करूंगा, सब लोगों को साथ साथ इनेबल करने की कोशिश करूंगा, कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ इंस्पायर करूंगा, कुछ उनसे इंस्पिरेशन लूंगा. जब मैंने ये करना शुरू किया तो डर आया. मैं सबसे दुनिया में अपने घर में अपने ख़ानदान में अपने स्कूल में मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन मैं सबसे डरा हुआ बंदा था, सबसे डरता था, मैं दुनिया से डरता था. मेरा यही हाइट थी, मैं क्लास में खड़ा होता था मेरी टांगें कांप रही होती थी, मेरे गले में गोला सा फंसा होता था, मैं क्लास उन सब्जेक्ट्स में फर्स्ट आता था तब भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं था. मैं आर्मी में गया वहाँ पर भी लोगों को लगता था मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ. मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था क्योंकि मैं फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली वीक था, बहुत नॉर्मल लोगों की तरह नहीं था मेरा सिस्टम. तो इसीलिए मुझे जब कोई नॉर्मल नज़र, मुझे सब कुछ डिफरेंट लगता था, सब कुछ अपने से अच्छा और बड़ा लगता था, तो मैं उसके सामने छोटा वीक और कमज़ोर लगता था, तो मैं डर जाता था. तो डर जाने से जैसे ही मैंने अपने डर पे काम किया, हर किस्म के डर से बाहर निकलने पे काम करना पड़ता. डर से निकलने के क्या तरीके हैं, अपने आप पे काम करना, अपने फेथ पे काम करना, अपने जो ज़िंदगी में आपने रिजल्ट्स दिए उनको याद रखना, आपके बारे में लोगों ने जो कुछ आपको बोला हुआ है, आपके प्यारों ने, आपके दोस्तों ने, या जिन चीज़ों में आपके अचीवमेंट्स हैं लोगों ने जो कहा हुआ है उसको याद रखना, ये सब हर वक्त याद रखना. जब कोई नुकसान होता है मेरा पैसे का, टाइम का, एनर्जी का, इमोशन का, मैं उसके पे थोड़ा सा दुखी होता हूँ, लेकिन ज़्यादा याद मुझे ये रहता है मेरे पास और कितने पैसे हैं, अभी कितने हैं मेरे पास, क्या मैं सर्वाइव कर लूँगा, हाँ जी, खर्चा चल जाएगा, हाँ जी, सेविंग गुजारे लायक है, हाँ जी, کیوں ٹینشن لینی ہے اس بات کی, آگے بڑھو. رشتے چلے گئے, کیا اس کے بغیر میں سروائیو کر لوں گا؟ ہاں جی. اور دوست ہیں؟ ہاں جی. معاملات ٹھیک ہیں کچھ اور؟ ہاں جی. ایک بزنس تو برباد ہو گیا, دوسرا کمزور ہو گیا, اور چھوٹے موٹے بزنسز ہیں؟ ہاں جی. بچا لیں گے, بچ جائے گا, آگے دیکھتے. سو اس طرح پلاننگ زندگی کیسے کرنی ہے؟ لوگوں نے صرف آپ کو بار بار بولیں گے ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ, یو ہیو ٹو لٹرلی ڈو اٹ. اکنامکس کا بیسک اصول ہے, ہر بندہ آپ کو بتائے گا, لیکن پھر آپ دیکھیں گے دے آر پٹنگ آل دیئر ایگز ان ون باسکٹ. وائی؟ بیکاز وی آر ناٹ یوزنگ آر برین. بیکاز وہ دوسرا لگتا ہے کہ اس کو نہیں دوں گا تو اس کو ہو جائے گا, اس کو نہیں. ہر بندے نے جتنا جتنا کانٹریبیوٹ کیا ہے اس حساب سے اس کو دیں گے. دوستوں نے جتنا کیا ہے دوستوں کو دیں گے, فیملی کو وہ نہیں دوں گا. جو فیملی نے کیا ہے اس میں سے فیملی کو دوں گا. میری زندگی میں میرے مقصد میں جو میرے ساتھ چلا ہے اس مقصد کے اوپر میں اس کو دوں گا, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں, میں سوچ رہا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں, تو میں دنیا میں چھوٹے موٹے اپنی جورسڈکشن کے اندر حساب کروں گا جیسے جج کرتا ہے. وہ گاڈ نہیں ہے کہ اس کو سب پتا ہو, لیکن فیکٹس, فگرز, وٹنسز, ایویڈنسز کو سامنے رکھ کے اپنی جورسڈکشن کے اندر وہ فیصلہ کرتا ہے. میں بھی کروں گا, اتنا حق ہم کو رب نے دیا, اس کو بھی دیا ہے, تو مجھے بھی دیا ہے کہ میں اپنے فیصلے کروں. انہی فیصلوں کے اوپر میری آخرت جو ہے اس میں حساب کتاب میرے سے ہوگا. تو اس کو پریکٹیکلی جی کر کر کے کوئی بندہ اگر دکھا دے گا تو بڑا اچھا ہو جائے گا, ورنہ ریئلٹی اور جو ہماری باتیں ہیں وہ مل ہی نہیں رہی کہیں پہ. تو اس لیے کوئی کسی کو سامنے رکھ کر اپنی لائف ہی نہیں بنا پا رہا. وہ سمجھتے ہیں یہ سب زبانی کلامی ہے اور یہ زندگی ہے بھائی, اس میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو زبانی کلامی اور زندگی جب مل جائیں گے, کنورج ہوں گے, تو اوتھینٹیسٹی نکلے گی. اوتھینٹیسٹی نکلے گی تو کچھ پروز اینڈ کونز ہوں گے اس کے اندر, یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ. پھر خود بخود چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہوتی جائیں گی. مسلز ایک دن میں نہیں بنانا, آہستہ آہستہ مسلز بنتے ہیں. اسی طرح سوچ کے مسلز بھی ایسے ہی بنتے ہیں, اسی طرح فائنینشیل مسلز بھی ایسے ہی بنتے ہیں, ریلیشن شپس کے مسل بھی ایسے ہی بنتے ہیں. تو روز تھوڑا تھوڑا کرنا ہے, یہ دھیان دیں گے آپ تو چیزیں آسان ہو جائیں گی. آئی ہوپ میں نے جس طرح بھی ایکسپلین کیا ہے یہ ہو گیا ہے مجھ سے. اس میں سے دماغ کی کھڑکیاں اور پلاننگ ساری کی ساری آپ کے دماغ میں اتر آئی.
3: بہت زیادہ sometimes I feel like, but اس سے جو مجھے ابھی بات, میں نے ابھی ایک اور بات محسوس کی ہے. میں پتا نہیں کیوں میں محسوس کرنے والا بندہ زیادہ ہوں. تو جیسے پہلے بھی میں شو پہ آتا تھا, بات کرتا تھا آپ سے, جب سے آپ نے بات کری, جب ہم کسی اپنے سے کسی کو بہتر دیکھتے ہیں تو میں ڈر جاتا تھا آپ سے. مجھے یہ ڈر نہیں تھا, لیکن مجھے اپنا اندر جو دکھائی دیتا تھا نا وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. بیکاز you have everything what I would like to be, what I want to be actually instead of like. اور آج پہلی دفعہ ہے کہ میں اتنا کھل کے, اتنا without getting emotional I can say that, کہ میں نے آج اچھی طرح سے سنا.
1: اس کا مطلب
3: پہلے جب میں سنتا بھی تھا,
1: اس کا مطلب پتا ہے کیا ہے؟ اسٹرینتھ جو ہم آہستہ آہستہ جو اسٹرینتھ ہم ڈھونڈ رہے تھے, مسلز نے اسٹرینتھ, کیونکہ آپ نے ڈر ڈر کے بھی جا کے جم تھوڑا تھوڑا کر کر کے اس کے اندر اسٹرینتھ پیدا کر دی, تو بھی آپ اگلا ویٹ اٹھانے کے قابل ہو گئے. یہ اندر سے آپ کو پتہ نہیں لگ رہا تھا, بٹ اس کے اوپر کام ہو رہا تھا. آپ کے اندر چیزیں جا رہی تھیں, کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی ہے. تو وہ جب آپ کے اندر جا رہی تھی, آپ سوچتے تھے, سمجھتے تھے, اس کے ساتھ آپ کنیکٹڈ لیکن نہیں رہتے تھے. اب کنیکٹڈ, جب جب کنیکٹڈ ہو گئے, آپ کو کیا لگتا ہے رب نے کیوں یہ کانسیپٹ بنایا ہے عبادت کا؟ بار بار کنیکٹ کیوں کرنا ہے؟ دن میں پانچ دفعہ کیوں کرنا ہے؟ دن میں تین دفعہ, دو دفعہ یا ایک دفعہ کیوں کنیکٹ کرنا ہے مختلف؟ وہ کنیکشن از ویری امپورٹنٹ, بیکاز سیل فون کو چارجر میں ڈالو گے تو چارج ہوگا, تو وہ فل کیپیسٹی پہ آپریٹ کرے گا. پھر اس پہ اس فون کو یوز کرو گے, کالز کے لیے کرو گے, ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کرو گے, انفارمیشن کے لیے کرو گے, آسانی کے لیے یوز کرو گے, پھر دو دن جب ضرورت پڑے گی تو کنیکٹ کرو گے. اور یہی وہ چیزیں ہیں. اور رب نہیں چاہتا کہ آپ پرمننٹ کنیکٹ کر کے رہیں, یہ بات بھی سمجھیں آپ. پرمننٹ کر, اگر آپ فون کو پرمننٹ ہائی بیٹری پہ لگاتے رہو گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی. تو رب نے بھی آپ کو اس لیے کہتا ہے, سمجھیں اس بات کو, کہ ہر وقت کنیکشن اس کے ساتھ لگانے کے بجائے, دنیا بہت امپورٹنٹ ہے, دنیا کے حساب کتاب سے آپ کا کنیکشن ہو رہا ہوگا. تو اسی لیے کہتا ہے جب دنیا کے کام کر لو, جب اپنی رسپانسبلٹیز, ڈیوٹیز, جو بھی معاملات ہیں وہ کر لو, تو پھر شام کو, رات کے اندھیرے میں, دن کو, کسی وقت کنیکٹ کرو اور اپنے اپنی عبادات میں لگ جاؤ. کیا ہوگا اس سے؟ آپ فیول हो जाए, रीफ्यूल्ड हो जाएंगे दोबारा, और फिर आपको दुनिया के काम करने, हर वक्त यही काम नहीं करते रहना। एक साहबी थे बहुत बड़े, वो हर वक्त इतनी इबादत करते थे, बीमार रहने लग गए, घर के हुकूक नहीं पूरे हो रहे थे, चीज़ें नहीं हो रही थी, तो उनको बुला के मना किया गया कि ये आप इस ये नहीं कर सकते, परमानेंट ये काम नहीं कर सकते आप, ये बीच में करने की चीज़ें, और फिर दुनिया के काम में ये चीज़ें अप्लाई करके आप करते रहेंगे जी इबादत, उससे क्या होगा, आपने वो इबादत आपके काम में नज़र नहीं आ रही, रिश्तों में नज़र नहीं आ रही, आपके बिजनेस में नज़र नहीं आ रही, आपकी हैंडिंग टेकिंग डीलिंग में नज़र नहीं आ रही, तो अप्लाई कब करोगे? तो लेकर अप्लाई करना, कनेक्ट करना, फिर अप्लाई करना, फिर वापस आके कनेक्ट करना, ये सारा काम है। और इसी प्रोसेस के अंदर जो कंसिस्टेंट रहेगा उसके नंबर, जैसे उसकी फिजिक बनती है जिम जाने से, जो परमानेंट जाता रहता है, जो नहीं जाते उनकी उस हिसाब से फिजिक बनती है, जो कभी नहीं जाते उनकी उस हिसाब से फिजिक बनती है या बिगड़ती है। तो एक्चुअल में चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बताने वालों ने, बनाने वालों ने, और या जिसने करके दिखाना था उसने अपने ज़माने में तो करके दिखा दिया, लेकिन उसके बाद के ज़मानों में वो एक देवमालाई कहानी बन गई, एक लार्जर देन लाइफ स्टोरी बन गई बस, और सब उनको बाव डाउन तो कर रहे हैं लेकिन कुछ सीख कर थोड़ा सा भी अप्लाई करने की कोशिश नहीं कर रहा। ये सिर्फ करने होगा, ये जब करने लगेंगे चीज़ों को ना ढीला, मैं आप सिर्फ वो कहता हूँ ढीला छोड़ भाई, अभी आपने थोड़ी देर पहले ढीला छोड़ा, ढीला और ये कि कभी कभी अक्सर लोग कहते हैं कि नो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ भी ज़्यादा नहीं होता, थोड़ी देर के बाद आपको लगने लग जाता है कि ये बहुत हो गया, आपने ये दिमाग से छोड़ना ही, मतलब निकाल देना है कि जितना भी आ रहा है मैं ले सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, कोई मेरा दिमाग रब ने इसीलिए पैदा किया, मैं एहसास कर सकता हूँ कि कुछ हो रहा है, कुछ चेंजेस आ रही हैं, कुछ रिजल्ट्स आएंगे, मैं इस पर काम करूँगा, और कोई जल्दी, मैंने कभी कहा है आपको कुछ जल्दी करे? मैं इतना स्लो प्रोसेस करने वाला आदमी हूँ, मैं कहता हूँ जिम जाना है ना सिर्फ ट्रैक सूट खरीद लो, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू द जिम, द एफर्ट दैट यू हैव डन गोइंग टूवर्ड्स द जिम, इक्विपमेंट खरीद लिया जो भी आपको चाहिए, आप जाके जिम में बैठ के हो सिर्फ, फिर शर्मिंदगी से दूसरों की देखा देखी, क्योंकि चले गए हो, काम हो गया, एक बहुत बड़ा काम हो गया, फिर आगे करोगे, फिर उसके बाद दूसरों को देख के करोगे, आहिस्ता आहिस्ता चलोगे, खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता उमंग पैदा होगी, दोस्ती होगी, ताल्लुक होगा, मामलात बनेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली। जो कहते हैं जी पार्टनर नहीं मिलता, वहीं से मिल जाता है। अक्सर लोग कहते हैं जी मुझे टैंगो करने का बहुत शौक है, या लंबाडा करने का, या फलां करने का बहुत शौक है, मेरे साथ तो कोई खेलता ही नहीं। आप उस जगह जाओ जहाँ ये सब होता है, लोग खुद आपसे आके कह रहे होंगे कि मेरे साथ ढाणियां खेलें, फिर आपकी मर्जी खेलें ना खेलें, ठीक है, और फिर बहाने होंगे, ओए हो डांडियां मेरी उंगली पे लग गए, अरे भाई कोई बात नहीं, लग जाती होती है कभी कभी, छोटी मोटी चीज़ें होती रहेंगी। सो इस तरह आपने खुद को ढीला छोड़ के चांस दें, आप खुद को चांस दें, लोगों की बात नहीं मैं कर रहा, किसी और को चांस मत दें, आप खुद को चांस दें, आप अपने डर से बात करें, ताल्लुक रखें, थोड़ा थोड़ा आगे जाएं। हमारा दोस्त है, उसके हम बिज़नेस पे, उसके हम फाइनेंसिस पे फर्ज़ करो काम करना चाह रहे हैं, वो इतना उसने सारी ज़िंदगी एक ही तरीके से काम किया, वो डर के अपने फाइनेंसिस ही बेहतर नहीं करना चाहता, और वो इतने स्लो बेबी स्टेप ले रहा है कि मतलब बंदा हैरान हो जाए, बट ही इज़ अलाउड टू डू दैट, ये उसका प्रोसेस है, उसको और बहुत कुछ आता है, कमाल है वो अपनी चीज़ों में, बट इस काम में एक दफ़ा जब उसको फ़ायदा हुआ, रिज़ल्ट आया, वो फिर खुद बहुत करता रहेगा। तो कभी कभी हाथ पांव पकड़ के साथ चलना पड़ता है, बाकी जिसने नहीं उड़ना उसने नहीं उड़ना, और कुछ अरसे के बाद आपने उसको छोड़ के किसी और को के साथ उड़ना है, क्योंकि खुद उड़ने वाला सिर्फ उड़ने के लिए पैदा हुआ है, उसका कमाल उड़ने में ही नज़र आएगा, ज़मीन पे रेंगने में उसका काम नहीं है, वो किसी और का काम। तो डर किस चीज़ का, यहाँ तक आ गए, कई दफ़ा हमें लगता है हम इस काबिल नहीं थे, आ गए कोई हमें ले आए, अब आगे इससे भी बेहतर लेके जाएगा, जिसने यहाँ तक इतना कुछ दे दिया वो कैसे मान जाएं कि वो आगे नहीं देगा। तो डर, और एक दिन डर किस बात का, एक दिन मर जाएंगे, सभी मर जाएंगे, कुछ नुकसान हो जाएगा, सबका होता रहता है, हमारा भी हो जाएगा, रिश्ते टूट जाते हैं, सबके टूटते हैं, हम कोई इधर ठेका लेके आए हुए, हम अपना काम करेंगे, एफर्ट करेंगे, कोशिश अच्छी करने की कोशिश करेंगे, दिल को, दिमाग को, नीयत को ठीक रखेंगे, चलता है चले, नहीं चलता कोई बात नहीं, उससे हम सीखेंगे, बेसिक्स कवर्ड होंगे, आगे उसमें हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, अगले लोगों में जो गलतियां की हैं हमने वो नहीं करेंगे, अगले अगर गलत लोग सिलेक्ट किए थे वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। एक्चुअल में ज़िंदगी इसीलिए थी, ये फिर लोगों ने इसको बना दिया पिजन हो, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, शादी ऐसी होती है, فلاں اور شادیاں اس کا پہ لاسٹ نیم میرے ساتھ اچھا لگے گا, فلاں ہوگا, یہ ہوگا. ان نیچ پنوں سے باہر نکلیں گے تو انسان اپنی عظمت کو اوپر کی طرف, چیزوں کی طرف لے کے جائے گا, اور اتنا کچھ ہو جائے گا کہ ڈر کو, جو بندہ بلینئر ہوتا ہے اس کا آپ کو لگتا ہے ملین کا نقصان ہو جائے تو وہ ڈر جاتا ہے, نہیں. عام بندے کا ملین کا ہو, جس کے پاس ایک ہی ملین ہو تو اس کی روح فنا ہو جاتی ہے. ٹرو. تو
3: مجھے نا سر اسے ایک بات یاد ہے, آخری بات کروں گا. مجھے مرنے کا ڈر پہلے بھی نہیں تھا, لیکن آپ نے جب سمجھایا نا کہ ریسپانسبلٹی کے, ریسپانسبلٹی پوری کرنے کے بعد آپ وہ, ہاں جی, تو میں نے ابھی کیا کیا کہ مجھے ابھی بھی نہیں ہے خوف, لیکن میں نے کیا کیا تھوڑا ریسپانسبلٹی کا جب وزن آیا تو میں نے کیا کیا اپنا جو فائنینسز ٹھیک کر کے, جیسے میرا گھر تھا, گھر میں نے بیوی اور بچوں کے نام کر دیا, جو میری سیونگس ہے اس کو میں نے جو ان کے نام کر دیا, اگر مجھے کچھ ہو دے آر سیٹ, تو ان کو یہ کاغذی چکروں میں نہ پڑنا پڑے. تو مرنے کا مجھے کبھی بھی خوف نہیں رہا, جینے کا خوف ہو رہا ہے.
1: یہ جو ہے نا اصل میں جینے ہی کے لیے تو پیدا ہو رہے تھے, تو اس کا کیوں خوف ہو رہا ہے؟ مجھے ڈر جو ہے نا موت کا نہیں ہے, جیے بغیر مر جانے کا ہے. سمجھ رہے ہو کہ جس کام کے لیے میں پیدا ہوا تھا, جس کام کے لیے مجھے کریٹ کیا گیا تھا, اسی کو کرنے سے میں گریزا ہوں, اسی کو کرنے سے میں ڈرا ہوا ہوں, یہ مجھ کو نہیں کرنا. اور یہ جتنا آپ نے دوسروں کے نام پہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں, یہ چیزیں آپ کو ڈر سے دور کر رہی ہیں, آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. میں اپنی زندگی میں جس کو جو کرنا تھا, بتانا تھا, بتا چکا, جس کو جو دینا تھا دے چکا, فیملی میں بھی, دوستوں میں بھی, اور باقی جو کچھ چھوٹی سی ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں وہ کس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے اس کو کیسے ہونا ہے, اور وہ ہو بھی جائے گی, کیونکہ کبھی کبھی یہ پروسیس لمبے ہو جاتے ہیں. تو اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں, اور آپ اس بات سے کہ اس کرنے کے بعد میرے ساتھ کون کیا کرے گا کے ڈر سے بھی باہر نکل آئے. سو آپ بہت اوپر اسٹیپس بہت ٹھیک ٹھیک جا رہے ہیں. اسی طرح آہستہ آہستہ چیزیں خود بخود ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور آپ کو سمپل یہ سمجھنا ہے کہ مجھے ایفرٹ لیس ای سے جیسے میں جاب کرتا ہوں ویسے ہی مجھے کمیونیکیٹ کرنا ہے, ویسے ہی مجھے رشتے بنانے ہیں, مجھے بس یہ اس کے پیچھے کی ایفرٹ کرتے رہنا ہے, اور آئی جسٹ ہیو ٹو میک اٹ سیم لائک ایفرٹ لیس.
3: جی سر.
1: اور اس کے لیے ہم نے جو آزاد تھاٹ بنائی تھی, اف اونلی یو نیو ہاؤ مچ ایفرٹ از ریکوائرڈ ٹو میک سم تھنگ سیم ایفرٹ لیس. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے بڑا کام کرنا پڑتا ہے, آپ وہی کام کر رہے ہو. تو کام کرنے والا بندہ کام سے نہیں ڈرتا گھبراتا ہوتا, اور خود پہ کام کرنا جس کا اتنا فائدہ ہے, اور رب پہ ہم ہی ہم سے ہی کام کرواتا رہتا ہے. ایکچولی یہ ساری عبادات ہم پہ کام ہو رہا ہے, ہماری سوچ پہ کام ہو رہا ہے, ہمارے جسم پہ کام ہو رہا ہے, اور رشتوں میں بھی ہمیں بتایا گیا کہ رشتے ہونے چاہیے, اس میں بھی آپ کام ہی کر رہے ہوتے ہیں, یہ سب کام ہی ہے. لیکن کام رہ کر کام کرنا یہ اصل کام ہے. سمجھے؟ کام رہ کر کام پہ لگنا اور کام کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہنا یہ اصل کام ہے. اس کا ویڈیو بننا چاہیے تھا, یہ دوبارہ نہیں آئے گا. کبھی کبھی تو ہم کوئی لائن کریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ یاد کرا,
3: یہ نشانے پہ لگی ہے سر جی.
1: ہاں جی, یہ اگر یہ سمجھ گئے نا ہم کہ یہ کیسے ہونا ہے, اور جتنے لوگوں کو میں غصہ کرتا ہوں, ناراض ہوتا ہوں, سختی کرتا ہوں, وہ صرف میری وہ جو کام ہونے سے جو مجھے دور کرتے ہیں نا, اریٹیٹ کر کے یا غصہ چڑھا کے یا ناراض ہو کے, میں اس بیلنس سے مجھے باہر جب نکالتے ہیں تو میں غصہ کرتا ہوں کہ مجھے بیلنس سے نہ نکالو, میں بڑی مشکل سے بیلنس کے اندر رہنا چاہتا ہوں تاکہ یہی بیلنس میں رہوں میں, اور مجھے مسئلے بتائیں, پریشانیاں, تکلیفیں بتائیں, میں آپ کو صرف بتاتا جاؤں اور ساتھ ساتھ حل کرتے جاؤں اور آگے ٹھیک ہے.
3: تھینک یو سر,
1: سو گریٹفل برادر, تھینک یو ویری مچ. اور جناب آپ سن رہے تھے ہیرا سنگھ جی کو ہمارے ساتھ, اور کر رہے تھے انجوائے اور ریلیٹ کر رہے تھے بہت ساری باتوں سے ان کی, اور آہستہ آہستہ دیکھیے کیسے کیسے لوگ کمال کر رہے ہیں جی. مہربان, نمبر ہے اسٹوڈیو کا 9725019390. آپ لوگ اتنے ہمتن گوش ہو کے, یو آر آل ایئرز لسننگ ٹو ہیرا سنگھ جی اور ان کی پیار بھری مزے مزے کی باتیں. ریڈیو آزاد, یو آن دی ایئر.
4: جی السلام علیکم آزاد جی.
1: جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بوتھ چارٹ بنانے آئی ہیں آپ ہیں جی؟
4: ہاں جی, بوتھے ملیں گے نا سارے پھر اکٹھے.
1: جی جی جی,
4: میں سن رہی ہوں شروع سے ایکچولی, اینڈ اٹس اے ونڈرفل یو نو شو, نالج بہت زیادہ یو نو, اور مجھے کئی کوشچنز بیچ میں آئے, کئی وہ ہوا, کیونکہ Hira Singh ne, I think he helped everybody else also asking all those things also, jo hai na. So, main ye soch rahi thi ki hum zindagi mein bahut late sochte hain kyunki hum apne aap ko doubt karte rehte hain. Why is that? You know, kyunki hamari tarbiyat aisi hui hai ya hamare mein koot koot ke ye dala gaya hai ki tum apne aap ko doubt karte raho, apne upar confident na karo. तुम अपने यू नो यही तो, लेकिन जब लेटर एज में वो सारी चीजें वो होती हैं तो देन यू आर लाइक यस मुझे ये फीलिंग थी, मुझे ये कर लेना चाहिए था
1: जी,
4: लेकिन आई डिड नॉट डू दैट
1: जी,
4: एंड देन यू पे फॉर इट इन योर लेटर एज.
1: देखिए जो हमारे बुजुर्ग थे ना, दे डिड नॉट नो मच, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, चाइल्ड की डिवेलपमेंट के बारे में, क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट के बारे में, उस एनवायरनमेंट के अंदर बड़े होने वाली बहुत सारे लोग, उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, उन्होंने बहुत सारे ऐसे चरके और बहुत सारी ऐसी गलतियां हो गई उनसे, क्योंकि सिर्फ पेरेंट्स की बात नहीं है, सोसाइटी पूरी की पूरी इवॉल्व कर रही थी.
4: सोसाइटी की बात है, हाँ जी, मैं सिर्फ पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे इर्द गिर्द भी सारे जो लोग थे उन्होंने भी हमें यही फीलिंग दी
1: जी. असल में ना प्रोडक्ट जो है ना, पेरेंट्स भी उस जमाने के, जो हमारे पेरेंट्स जिस जमाने में थे वो भी सोसाइटी की सोच के प्रोडक्ट थे, ठीक है. अब दुख की बात ये है कि जो अगली जो पीढ़ी आई है, जिसमें पुराने ज़माने में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं थी, इस तरह इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इस तरह वीडियोज़ नहीं थे, इस तरह इल्म इतना आम नहीं था, इस तरह जो चाइल्ड साइकोलॉजी, इस तरह साइकोलॉजिस्ट, यू नो साइकियाट्रिस्ट, उधर कोई जाते थे तो लोग समझते हैं पागल हैं, पगले हैं, हालांकि हर बंदे को होना चाहिए. अब इतना कुछ बदल गया है कि इस ज़माने में ये सब कुछ होने के बावजूद में जब अपने हम उम्र जो लोग हैं या जो हमसे बड़े हैं वो इस ज़माने में रहते हैं, हर वक्त फ़ोन पे रहते हैं, फेसबुक पे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे रहते हैं, यूट्यूब पे रहते हैं, नई इन्फॉर्मेशन सारी उनको मिल रही है, चेंजेस उन्होंने अपने ज़माने की देख रही हैं. दुख की बात ये है, वो उनसे भी बुरे हालात हैं उनके.
4: हाँ जी, नहीं बेस्ट इसी ये वही है ना चीज़ के हम फिर उसको यूज़ कैसे करते हैं. बिकॉज जिस तरह मैं अपने बेटे से कई दफ़ा बात करती थी, ही एम्पावर्ड मी अ लॉट रियली, एंड वो मुझे कहता है कि मॉम गूगल इज़ देयर, मॉम there is so much information, there are, you know, you can watch things on YouTube, you don't, you have to just think out of your jo circle hai.
1: Haan ji, wo jo cycle jo hai na, brain wave, aur
4: cheezon ko bhi dekho.
1: Haan ji,
4: unhe bhi socho jo hai.
1: Asal mein na uske liye conscious effort karni padti, wo hum kyun nahi karte is tarah ki conscious effort karni padti, aur conscious effort ka matlab ye hai jo purani brain ke andar wiring ho gayi hai उसके खिलाफ हमको कुछ नई चीज करनी है, और वो वेरी डिसकंफर्टिंग होती है.
4: क्योंकि देखें पहले हमने लगाया हुआ, अगर एनिमल चैनल लगाया हुआ, प्लैनेट चैनल लगाया हुआ, तो जी वो मछलियां आ रही हैं, वो शेर आ रहे हैं, तो यू नो वी वर नॉट इवन पेइंग अटेंशन के व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे
1: जी.
4: अब मैं उसके साथ जब बैठ के देखती हूँ तो मैं उसे यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ फारूक बेटा ये चीजें तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इन चीजों के बारे में इस तरह इन्फॉर्मेशन मिलेगी
1: जी. अब आप ये सोचें, जो कुछ आपने नहीं सोचा हुआ था ना, या जिन चीजों को आप नहीं जानती थी, उसकी वजह से आपकी वो जिंदगी बन गई जो बन गई, ठीक है
4: जी.
1: ले अब जब ये चीजें हम जानते हैं तो इससे हमारी एक नई जिंदगी बननी चाहिए और डिफरेंट बननी चाहिए, क्योंकि अब हम ये जानते हैं तो इसको अप्लाई भी करना है कहीं.
4: That's correct. लेकिन आजाद जी डर कौन खत्म करेगा, वो जो है कि हम नया स्टेप लेने जब लेना चाहते हैं तो यू आर स्टिल अफ्रेड ऑफ अननोन.
1: मुझे ये बताएं, जब डॉक्टर के पास आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई देता है, तो दवाई कौन देता है आपको?
4: डॉक्टर देता है,
1: उसने दे दी, उसके बाद आपके पास दवाई घर में आ गई, अब दवाई कौन देता है आपको?
4: हम खुद लेते हैं
1: जी. डर भी हम खुद दूर करेंगे, ये भी हमारा ही मसला है, समझिए. तो अब समझिए, एक्चुअल में मसले बहुत मुश्किल नहीं होते, ये बाहर से कुछ नहीं आना है, ये सब अंदर से, ये जो जो इंतज़ार कर रहे हैं मसाया का, आप ही अपनी ज़िंदगी के मसीह, वो उन्होंने आना है जब आना है, लेकिन घर के मसले उन्होंने हल नहीं करने, फाइनेंशियल मसले उन्होंने हल नहीं करने, फैमिली के मसले उन्होंने हल नहीं करने, बच्चे जो पेरेंट्स के साथ लड़ झगड़ और परेशान हो रहे हैं या कर रहे हैं, या माँ बाप उनको कर रहे हैं या वो उनको कर रहे हैं, ये सारे मसले ऐसे ही रहेंगे आपके. ये मसले सॉल्व करने का मसीहा पैदा हो चुका है और वो आप हैं, आप मर्द हैं, औरत हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, आप अपने जहन पे, अपने जिस्म पे, अपने रूह पे काम करना आपका हमारा काम है, दवाई लेना हमारा काम है, वरना बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी, दर्द बढ़ता चला जाएगा।
5: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी ली तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
6: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
7: Inspire FM.
8: Inspire 105.1 FM.
9: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Give prayers daily to build a mental shield against anxiety and keep your heart at peace. Thanks for tuning in and keep listening for more only on Inspire FM.
10: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice and great offers, including buy one, get one free on all medium, large.

0: शोर नहीं पकाता,
1: बस फिर ठीक।
0: दिमाग दिमाग कभी कभी कभी कभी बहुत अलर्ट हो जाता, कभी कभी फिर वो हो जाता, कंफ्यूज हो जाता कि वो हो।
1: ये इसलिए ना कि 80 साल तक अगर कोई बजा या 70 साल या 60 साल तक जिम ना जाए, तो जब उसके हाथ में मैं छोटे से भी वेट पकड़ाऊंगा 5 पाउंड के, तो उन्होंने कहना ओहो ये तो बहुत प्रेशर है।
0: हाँ बिल्कुल, 80 साल के लोगों को इतना वजन नहीं उठाना चाहिए ना। हाँ, अगर वो आदी नहीं है तो,
1: अगर वो हाँ तो आदी हाँ, होना चाहिए,
0: आदी
1: था।
0: नहीं है तो
1: हाँ जी, अब आदी
0: जो, जो करते हुए आए हैं उनके लिए ठीक है। अच्छा मैं ये बोल रही थी, दुनिया में किस्म किस्म के लोग हैं
1: जी।
0: अभी आप बात कर रहे थे कि बाज लोग ऐसे हैं कि तो मैं ये कह रही हूँ कि बाज लोग इतना काम करते हैं लेकिन उनको एप्रिसिएशन नहीं मिलता, उनको उनको रिकग्निशन नहीं मिलता, बल्कि लोग जो हैं उसको और भी यू नो उसको रन डाउन करते।
1: ठीक है,
0: तो क्यों ऐसा होता है? ऐसे लोगों को कैसे डील करना चाहिए कि तुम अगर प्रेज नहीं करे वो नहीं करे तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को गिराओ तो नहीं ना।
1: दो बहुत दो तीन पॉइंट्स मैं इस पे बात करता हूँ, ठीक है। एंड वेलकम बैक टू द शो। ये जनाब पॉइंट ये था कि जब लोग कोई एफर्ट करते हैं तो बजाय आप उनको अप्रीशिएट करें आप उनके खिलाफ बात करते हैं या उनको आप डीग्रेड करते हैं या उनके एफर्ट की आप कदर नहीं करते, तो कम से कम इतना तो ना करें। देखें ये इसकी दो रीजंस हैं। एक मसला ये है कि जब हमने अपने जहन में ये सोच लिया, गौर से सुनिएगा इस बात को, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है ये बात। जब तक आपने अपने जहन से ये बात नहीं निकाली कि मैं काम इसलिए कर रहा हूँ या इसलिए कर रही हूँ कि मुझे अप्रिसिएशन मिले, ये गलत सोचने का तरीका है। आपको एक काम मिला हुआ है, ये बहुत बड़ी बात। मुझे एक जॉब मिली हुई है, देखें जब जॉब नहीं होती ना तो कोई बंदा नहीं सोचता मैं जब जॉब करूंगा तो मुझे अप्रिसिएशन चाहिए होगी। उसको जॉब चाहिए होती है, वो मर रहा होता है जॉब के लिए। उसको किसी बंदे ने शादी करनी है ना, उसने नहीं कहता जब बीवी आएगी तो मुझे ऐसे खिलाएगी, ऐसे पहनाएगी, ऐसे फलां करेगी, मेरी फलां करेगी। वो कहा भाई मैंने शादी करनी है किसी भी तरह, सब कर रहे हैं, मेरी रह गई है, लोगों की शक्ल मैं अपनी नहीं दिखा पा रहा, इट्स ऑल अबाउट पीपल। ठीक है जी, उस वक्त वो कुछ नहीं सोच रहा होता, वो बाद में कहता है देख लेंगे, डील कर लेंगे, हो जाएगा। और फिर उनसे कुछ ना डील होता है, ना वो देख सकते हैं किसी चीज़ को, ना खुद को आईने में, ना दूसरों को, ना रिश्ते को। तो ये समझना ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने ये बात जब ज़िंदगी में सीखी कि मुझे अपना काम दिलो जान से करना है, और अगर मैं लोगों से अप्रिसिएशन चाहूँगा ना, तो लोग क्योंकि मेरी तरह सोचते नहीं है, मेरी तरह करते नहीं हैं, तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि जब वो मेरी तरह सोचते ही नहीं है तो उनको पता ही नहीं मैं क्या प्रोग्रेस, मैं सर्विस क्या दे रहा हूँ आपको, तो उनका ये सोचना कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, क्या फ़र्क पड़ता है? जिसको पता है, देखिए मैं सिंगर हूँ ना, अगर मैं कभी भी आवाम आपको दाद दे रही है, आगे बैठे हुए लोग आपको दाद दे रहे हैं, ऑल ऑफ दिस इज़ गुड नाइस, आप इसकी रेसिप्रोकेशन में और अच्छे सुर लगाएंगे, वजतारी हो जाएगा, कमाल कर देंगे। लेकिन आम बंदा जिसको म्यूज़िक की सुर की समझ नहीं है, वो सारा दिन बैठ के मेरी तारीफ़ें करता रहे या कई लोग करते रहें, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक मास्टर जो इस काम का है ना, वो मेरी तारीफ़ नहीं करेगा, उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, उससे मुझे इनकरेजमेंट भी मिलेगी, इंस्पिरेशन भी मिलेगी। आम आदमी तो वैसे ही कह रहा होता है आप बड़ा अच्छा काम करते हैं, आप बड़े अच्छे हैं, वहाँ कहते हैं जी आपका शो बहुत अच्छा है, कितने बजाते हैं आजकल? ऐसे बंदे से क्या आपने एक्सपेक्ट करना कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, या उसको फ़र्क पड़ रहा है? आपको भी आहिस्ता सा समझ आ जाएगी इन बातों की। ये हमारी जो ख्वाहिश है ना, जब तक हम इस ख्वाहिश से बाहर नहीं, आप इस ख्वाहिश से आज़ाद हो जाए, जिस दिन आप इस ख्वाहिश से आज़ाद हो गए, आपको इतना अप्रिसिएट करने वाले मिलेंगे कि आप अप्रिसिएशन से थक जाएंगे। ये और आप कहेंगे भाई कोई और बात करो, मैं जानता हूँ लोगों को मेरी ज़िंदगी में होता है, इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बताता हूँ। पहले अपने पे काम करना है, फिर आएंगे उन लोगों की तरफ के जो आपको अप्रिशिएट नहीं करते। जो लोग अप्रिशिएट, अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ के, जो लोग अप्रिशिएट नहीं करते। देखें लोग जो है ना, कम ज़र्फ़ लोग जो है ना, दोनों लोग गड़बड़ हैं। एक चापलूस, जो आप डिज़र्व नहीं करते उसके बारे में आपकी तारीफ़ें करें, वो आपका लिमिट कर देते हैं आपको, आपको लगता है मैंने परफॉर्म कर लिया, बेस्ट कर लिया, एक्सेलेंस में मैं आ गया, मुझे और कुछ नहीं करना, बस बहुत हो गया। ये 2-4% के ऊपर आप खड़े हो जाएंगे और कोई कमाल नहीं होगा, और फिर आप कहते रहेंगे। अब जो कुछ दिनों के बाद जब आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी, तो फिर आप रोना धोना शुरू कर देंगे, ठीक है। और कुछ लोग जो होते हैं वो इतना बढ़ा चढ़ा के वो बयान उन्होंने

कर दिया तो आप उसमें फ्लैटरी में आ गए और खाम खा आपको लोग कहते रहते हैं, आपका लेवल उधर ही रुक जाता है। कुछ लोग अच्छे से अच्छा आप काम करते हैं, वो कहते हैं जी आपने नहीं अच्छा किया, बुरा किया, अवॉइड करते हैं। ये लोग इनसिक्योर होते हैं, उनको ये डर होता है कि कहीं जो चीज़ आप दे रहे हैं इसके बदले आप कुछ मांग ना बैठे, इसके बदले कहीं आपको और कुछ ना देना पड़ जाए। या वो इतने छोटी सोच समझ के लोग होते हैं कि उनको नहीं पता, इस इतने कम अकल होते हैं उनको नहीं पता कि अगर कोई औरत अच्छा खाना बनाती है और उस खाने की आप तारीफ़ कर लेंगे तो वो औरत और अच्छा खाना बनाएगी, तो कौन खाएगा वो खाना? आप ही खाएंगे, आप ही के घर में अच्छा जायका बनेगा। बदबख्तो इतना सा तो समझ जाओ, किसी की तारीफ़ कर देने से अगर वो खुश होकर वो दोबारा उस चीज़ को बेहतर कर दे, हर वक्त अगर वो मांगते हैं तो उसको दिमाग का इलाज करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये सब करना, कभी कभी तजदीद चीज़ों की करना उसको बार बार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साथ अगर आपने किसी को कुछ चीज़ों में ठीक भी करना है तो उसका भी यही तरीका है कि आप साथ साथ उनको ठीक कर लें चीज़ को, तो ये भी हम ही ने करना होता है लेकिन हम नहीं करते। तो ऐसे कम ज़र्फ़ों से और फिर भी अगर आपने सर्विस उनको देनी है तो ज़रूर दें, लेकिन उनसे कुछ चाहे नहीं। कभी कभी जब वो दे देंगे तो चाहे तो उस दिन, मतलब आज बादलों में से चांद निकल आएगा, तो कभी कभी ऐसा हो जाएगा। अब ये जो दूसरे अगर लोग आपको ये तंग कर रहे हैं, वो सर्विस आप देने जाते हैं और वो नहीं लेते और उसमें से कीड़े ने कहा, सर्विस को बेहतर किया जा सकता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप फिर वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं अपनी ज़िंदगी में हर आदमी को वो काम देता हूँ जो वो करना चाहता है, और जो कहता कुछ है और करता कुछ है उसके ऊपर आई फॉल वेरी हैवी ऑन दैट पर्सन कि भाई आपने खुद ही कहा था, खुद ही आप कर भी नहीं सकते हो। तो जो काम आपका शौक है ना, बल्कि मैं उसको उसकी नेचर से अलाइन कर लेता हूँ। जो आदमी सोशल है उसको सोशल टाइप के काम देंगे, बाहर के काम देंगे, कम्युनिकेशन जिसकी अच्छी उसको कम्युनिकेशन का काम देंगे। जो आदमी अकेले में या सुकून में या अलहदा से रहता है उसको उस किस्म का काम देंगे। जिस आदमी को म्यूज़िक या फ़न का शौक है, जिसको स्पोर्ट्स का शौक है, आपको उस किस्म का काम देंगे ताकि उसको करने में उसको फिटी, हर चीज़ को सोच समझ के करना होता है। जो लोग थके हुए होते हैं या कोई काम नहीं करते, उनसे मैं डिफरेंटली बात करता हूँ, डिफरेंटली उनके साथ मेरा बिहेवियर है, उनसे काम करने या करवाने का मेरा टोटली और तरीक़ाकार है। और जो आदमी एक दफ़ा चीज़ को कहने पे कर देता है, वो मेरी ज़िंदगी को इतना आसान कर देता है कि मैं उसके लिए हर वक्त सोचता रहता हूँ और मैं हर वक्त उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ और मैं उसको और ज़्यादा देना चाहता हूँ कि इसका ये हक बनता है कि मुझे एफर्ट, मेरा टाइम नहीं ज़ाया कर रहा, मेरा दिमाग नहीं ज़ाया कर रहा, मेरी ज़िंदगी नहीं ज़ाया कर रहा, और ये खुद से काम करता है, प्रोएक्टिव जो अप्रोच होती है। और अगर कोई गड़बड़ होता है तो बता देता है, इस चीज़ की मेरी ज़िंदगी में इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू है कि कई लोगों को समझ नहीं आती मैं उनसे क्यों इतना उनको टाइम देता हूँ, क्यों उनसे लंबी बात करता हूँ, क्यों उनके मसले हल करता रहता हूँ। इसलिए कि वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वो काम मेरी ज़िंदगी को आसान कर रहे हैं, और फिर भी उनको मैं वो काम देता हूँ जो उनकी नेचर। अगर आप किसी की नेचर के ख़िलाफ़ कुछ भी करेंगे, जितनी मर्ज़ी लोग आपसे मोहब्बत करें वो काम नहीं चलेगा, जितनी मर्ज़ी लोग आपकी इज़्ज़त करें नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी नेचर वो चीज़ उनको करने में तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, थकावट होती है, तो वो नहीं कर पाएंगे लॉन्गर रन में। इसलिए वो काम लेके फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ लोगों के अंदर। और एक और बात, कुछ लोगों को ये पहले ज़माने में भी था और हमेशा होता है कि जी मेरा उनसे रिश्ता इसलिए कि मैं उनको कोई काम वगैरह दे देता हूँ। मैं काम आपको इसलिए देता हूँ, या किसी आदमी को भी, छोटे को, बड़े को, मर्द को, औरत को, बुज़ुर्ग को, मैं काम इसलिए देता हूँ कि मेरा उनसे इंटरेक्शन रहे, मेरा उनसे मैसेज चलता रहे, मेरी उनसे बात होती रहे, मेरा उनसे रिलेशनशिप चलता रहे। ये भी मेरा तरीका है ज़्यादा इंटरेक्ट करने का, वरना जितना मैं बिज़ी होता हूँ या मेरा माइंड जितना बिज़ी होता है, रिश्ता पता ही नहीं चलेगा, निकल जाएगा हाथ से। तो कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा कुछ, और वो काम मुझे ये लगता है कि आप मुझसे बेहतर कर सकते हो, इसलिए आपको दिया है। और उससे जो इंटरेक्शन होगा और उससे जो, सिर्फ दो इंसानों में नॉर्मली अगर आप देखें तो एक दो चीज़ों की अगर ज़रूरत है, फ़र्ज़ करो वो ज़रूरत अगर पूरी हो जाती है तो फिर आपको बंदे का एहसास ही नहीं रहता, वो ज़रूरत कहीं और से भी पूरी हो जाती है। लेकिन अगर वो कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो कि आपने सिर्फ उसको दी हुई है, तो उस बंदे का की जो इम्पोर्टेंस है लाइफ में वो हमेशा रहती है, किसी भी तरीके से ज़रूर रहती है। तो इससे भी रिश्ता कनेक्ट करने की हम इंसान कोशिश कर रहा होता है, बट इसके लिए दिमाग को एक्टिवेट करना पड़ेगा। दिमाग समझते हैं आप? हाँ, वही जो हमने रख छोड़ा साइड पर उस कुरान की तरह, जिससे हम कभी कभी दुआ पढ़ लेते हैं या शादी करा के बेटी के सर से गुजार दे, सर के अंदर नहीं डालते, उस बेचारी की सारी ज़िंदगी तकलीफ़ में गुजरती है। तो दिमाग भी उसी, दिमाग का कनेक्शन भी
दिमाग भी उसी ने बनाया जिसने आपको किताब भेजी है, उसमें जो लिखा हुआ है वो दिमाग से कनेक्टेड होकर आपकी ज़िंदगी में आएगा तो उसके रिज़ल्ट आएंगे। ये सब कुछ कनेक्टेड है, ये सब कुछ कनेक्टेड है। केओस थ्योरी में भी सब नूर का मंबा है और ये नूर के सारे काम हैं, और नूर जितना आप कनेक्ट करेंगे उतनी ज़िंदगी आपकी आसान होगी और घूम फिर कर बात सारी की सारी वहीं आ जाएगी। और जब मुझे ये बात समझ आई कि जब सब कुछ घूम फिर के मुझे उसी के पास जाना है, मैं उसी को क्यों ना पकड़ लूँ डायरेक्टली, मैं जब सब का मालिक ही वो है तो मैं सोर्स में क्यों ना हाथ डाल दूँ, बजाय इससे मांगूँ, उससे, उसके बंदों से मांगूँ, मैं इससे करूँ, उसके पीछे जाऊँ, ऐसे करूँ, मैं हलकान हो जाऊँ, मैं सोर्स को ही क्यों ना पकड़ लूँ जो सब कुछ देने लेने वाला है, बड़े से बड़ा काम भी और छोटे से छोटी चीज़ भी, उससे मांगते हैं और कोशिश हम करेंगे, और उसमें जब वो दे, क्योंकि उसने दिया है जो ऑल माइटी मैग्नानिमस ऑल नोइंग सब कुछ है, तो वो जब वो देगा तो उसमें बरकत खुद ब खुद आ जाएगी। इंसान जब देगा तो वो इंसान जब भी देता है तो उसने कुछ लेना भी होता है, कुछ और मामलात भी होते हैं, दुनिया इंसान ऐसा ही होता है, दिस नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन मांगना सिर्फ और सिर्फ रब से है। उसको पाने के लिए इंसानों के साथ जो डीलिंग करनी है वो सही होनी चाहिए, उसमें नीयत ठीक होनी चाहिए, उसमें खुलूस ऑनेस्टी प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें गिव एंड टेक जो किसी का बनता है वो होना चाहिए, सच के ऊपर बेस करके होनी चाहिए। सच के ऊपर बेस करके कोई भी रिश्ता, किसी भी चीज़ को, कोई भी बिजनेस चलाया जा सकता है। इसके जो इसके ऊपर चार शेर बिल्कुल सही बैठते हैं, हमने जितनी आज बातें की हैं, अगर ये चार शेर आप जब इनको गौर से सुनेंगे तो आपको लगेगा आज के शो का हक अदा हुआ। शो का हक अदा करने वाले हीरा सिंह जी हैं, मेहरबान लोग हैं, जितने भी आज हैदर जी आई, डॉक्टर साहब आई, तमाम लोगों ने मिलकर ये शो बनाया और पता ही नहीं चला इन दो घंटों का, एनर्जी भी बहाल हो गई, कोई काम की बात भी आप लोगों तक और कोई आर्काइव्स भी जो हैं जी लोगों तक पहुंच गए, कम से कम आवाज़ ज़रूर पहुंच गई। हमारे कुछ टेक्निकल इशू जा रहे हैं स्टूडियो में, हम आजकल उस पर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह और भी बेहतर चीज़ें इसमें से निकलेंगी। बस आपने काम की बात याद रखनी है, वो क्या है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। मुलाकात होती है आप तमाम लोगों से इंशाल्लाह अगले शो में। खुश रहिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

0: Dade.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
3: Last time on Akhri Mojza.
4: तो जब अल्लाह ताला की बहुत शदीद मोहब्बत होती है ना, तो उस वक्त आपको रहमान का लफ्ज मिलेगा। बहुत शदीद रहमत, आपको तदब्बुर करना पड़ेगा कि यह कौन सी शदीद मोहब्बत है। इसीलिए फिर आपको सूरतुर रहमान समझ में आएगी। अर रहमान अल्लम अल कुरान, जिसने इतनी शदीद मोहब्बत की, इतना मुकम्मल ख्याल किया कि उसने उस मुकम्मल ख्याल और शदीद मोहब्बत के नाते कुरान सिखाया। इसलिए कुरान सिखाया। हमने क्या बना दिया कुरान को, और कुरान किस लिए सिखाया गया था, किस मोहब्बत से सिखाया गया था, क्या लिहाज करके हमारा सिखाया गया था, हमने क्या बना दिया कुरान को। सुभान अल्लाह।

0: तो ये हो गया थोड़ी सी बात अर्रहमान अर्रहीम के बारे में। अच्छा, लेकिन एक कन्फ्यूजन भी आ गई, वो भी समझ लें। रब में सरबराही के, सरदारी के मायने थे कि नहीं थे ना? मसला ये है कि जब किसी की अथॉरिटी होती है ना, तो आपकी दो तरह के मैनेजर्स होते हैं। एक मैनेजर होता है कोई एक एक चीज चेक कर रहा था, इसको माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कर रहे हो, कितना टाइम लगेगा, अच्छा दिखाओ क्या किया, हर मिनट चेक कर रहे हैं। एक मैनेजर होता है कहता है इस हफ्ते ये काम मुकम्मल कर लेना, मैं जुम्मे को चेक कर लूंगा, खुली छुट्टी, पूरा एतमाद है कि तुम कर लोगे, मुझे बार बार तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है। तुम कहो मैं घर से काम कर लूँ, काम कर लो, जहां से भी करो, दरख्त से लटक के कर लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम काम कर लो, जुम्मे को मुझे दिखा देना। ऐसे भी बॉस होते हैं कि नहीं? एक होते हैं जो हर चीज को मैनेज कर रहा है, और दूसरा खुली आजादी देके बस मुझे रिजल्ट्स दिखा देना, ये तुम्हारी डेडलाइन है। अगर अल्लाह ताला हमारे ऊपर इक्तदार रखते हैं, रब हैं, तो उनका हक है वो किसी भी लम्हे पूछ लें। लेकिन दुनिया की जिंदगी कैसी बनाई है, किस किस्म की मैनेजमेंट है अल्लाह ताला की? नमाज पढ़नी है, पांच वक्त पढ़ना, नहीं पढ़नी सोते रहो, वैसे पढ़नी चाहिए, मैं उठाऊंगा नहीं, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, लेकिन बोलोगे तो आसमान से कोई बिजली आके नहीं लगेगी जबान पे, बोलना बोलो, मैंने बता दिया नहीं बोलना, बाकी अब तुम्हारा है, तुम्हारी जिम्मेदारी, ऐसा ही है ना। उसकी मैं आपको इंसानी मिसाल देता हूं, हमारे यहां तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में अब गुलामी नहीं रही उस तरह की, लेकिन मिसाल के तौर पर कह रहा हूं, आप फर्ज करें कि आप मेरे बस साहब कहते हैं आज के बाद आप मेरे गुलाम हैं, मैं कहता चलो ठीक है, गुलामी कबूल कर लीजिए आपकी, क्या करूं जी आपके गुलाम होने के नाते, बस ये एक मैंने एक दायरा बनाया है, इस दायरे के अंदर रहना, बस बाकी कुछ नहीं, इस दायरे के अंदर रहना। कहो जी तो बड़ा आसान काम है, अब मैं दायरे के अंदर जिंदगी गुजार रहा हूं और आप मुझे दूर से देख रहे हो, एक दिन मैं जरा फिसल के गिर गया दायरे के उस तरफ, जब मैं दायरे के उस तरफ गिरा मेरी नजर फौरन कहां गई, मालिक की तरफ, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से वो कोने पे फिसल गया था, अब नहीं होगा अमल, मैं कुछ भी नहीं कहा, ऐसे बस एक लफ्ज नहीं कहा मैंने, मेरे जहन में आया माशाल्लाह बॉस तो वैसे काफी हल्का हाथ रखा हुआ उन्होंने, इतनी को सजा भी नहीं मिली। तो दो तीन दिन बाद मुझे थोड़ा ख्याल आया कि मैं जरा एक और दफा गलती से करके देखूं क्या होता है, तो मैं गिरा, फौरन मैंने देखा जो मेरे मालिक हैं वो बैठे हैं चेयर पे, उठे भी नहीं चेयर से, और फिर मैं कहूँ सॉरी सॉरी, वो कहते अच्छा जी ये तो इतना कोई सीरियस नहीं है जितना मैं पहले समझ रहा था, मैं पहले बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं इस कानून को तोड़ूंगा तो कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होगा ना, कोई साथ में इसके बारे में मुआवजा होगा, कोई सवाल जवाब, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक पाँव उधर, एक पाँव इधर, एक पाँव उधर, एक पाँव इधर, और फिर मैं बॉस को भी, वो भी मुझे ऐसे, और फिर कुछ अर्से बाद मैं दोनों पैर इस तरफ और घूम फिर रहा, और बॉस से भी, बॉस कह रहा लंच तैयार है, यानी ताल्लुकात में कोई वो अभी भी प्रोवाइड कर रहा है, अभी भी ख्याल रखे हुए है, और मैं लाइन के बाहर हूँ लेकिन कुछ नहीं कहा। अच्छा, मैं 5-6 साल इस तरह गुजार दिए इसी तरह से, इस दौरान मेरे साथ वो कुछ ज्यादा रियायत नहीं कर रहा। अब वो जो ज्यादा रियायत करता है ना कोई बॉस, तो उससे एम्प्लॉयज का क्या होता है पता है? ओए होए होए, मेरी एक बहुत पुराने जमाने में मेरी एक जॉब थी, मैं प्री स्कूल टीचर था, किंडरगार्टन एंड प्री स्कूल, और फिर मुझे वहां से जब मैं फारिग हुआ तो मुझे एक जॉब मिली, मैं तीसरी जमात को मैथ पढ़ाता था, मैथमेटिक्स, तो जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था सारी टीचर्स जो थी वो सीनियर थी, और बहुत ही यानी बच्चे देख के उनको, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि दादी याद आ जाए, दादी तो नाइस होती हैं, दादी नानी, उनको देख के क़यामत याद आ जाती थी। मैं गया क्लास में, मैंने कहा मैंने इन बच्चों से दोस्ती करनी है, इन बच्चों को मैंने डराना नहीं है। मैं गया, मैं लतीफ़े सुना रहा हूँ, मैं टेबल पे खड़ा हो के ट्रिक्स कर रहा हूँ, अपने यहाँ पे पेंसिल घुसा के यहाँ से निकाल रहा हूँ कुछ कर, वो तालियाँ बजा रहे हैं, सर्कस बना हुआ है क्लास के अंदर। मैंने कहा ये बच्चे मुझसे इतनी मोहब्बत करेंगे एक दो दिन बाद जब मैं कहूँगा मैथ शुरू करो, दिल खोल के पढ़ेंगे। तो मैं समझा ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, मैं इतनी मोहब्बत से इनसे डील कर रहा हूँ, खुली आज़ादी दी हुई है। तीसरे दिन मैंने कहा चलो भाई बच्चों ओपन अप पेज 5, क्या हुआ पता है? एक मुझे कहता है नो, दूसरा एक दूसरे से कहता है डू द पेंसिल, वो पेंसिल वाली चीज करे दोबारा। मैंने कहा नहीं, ओपन पेज 5। और मुझे अभी तक याद है एक बच्चा वो दीवार पीछे क्लास की दीवार पे गया, वहां पे वो यहां खड़ा अपना नाम लिख रहा है दीवार पे, और वो लिख रहा है और मुझे देख रहा है, और उसका दोस्त उससे कह रहा है यहां टीचर तुझे देख रहा है, तो कहता है हां लेकिन ये अच्छे हैं। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर आपके साथ रहमत की जा रही है, आपका बहुत ख्याल, बहुत शिद्दत से मोहब्बत की जा रही है आपके साथ, और उस मोहब्बत पूरा मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है, आप नाफरमानी करें या फरमा बरदारी करें आपका फिर भी ख्याल किया जा रहा है, तो उसमें इम्कान किस चीज़ का होता है कि आपको गलत फहमी हो जाती है कि ये तो नाइस ही नाइस है, ये तो है ही अच्छे, नरम दिल के हैं। अल्लाह ताला ने सवाल पूछा है कुरान में, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान तुझे अपना रब जो तुझसे इतना तुझ पर करम करता है किस चीज ने तुझे धोखा दे दिया, क्या उसके करण ने तो तुझे धोखा नहीं दे दिया, धोखे में तो नहीं पड़ गया? तो जब कहा ना अर्रहमान अर्रहीम तो ये खतरनाक बात कह दी, रब तो वो है, रब में तो अथॉरिटी आ गई ना, इक्तदार आ गया, और उसके बाद फौरन तसली दे दी किन अल्फाज से, अर्रहमान अर्रहीम। अब कोई अल्लाह ताला की हदूद से बाहर जाके उसने एक लिकर स्टोर खोल लिया, उसने कोई और हराम बिजनेस शुरू कर दिया और हरकतें शुरू कर दी, और उसको तुम कहो ये अल्लाह की हदूद से बाहर है यार, वापस आ जाओ हदूद के अंदर। यार तुझे नहीं पता एक लेक्चर मैंने सुना था अर्रहमान अर्रहीम, पता है कितनी चीज़ें, तीन चीज़ें होती हैं अर्रहमान के अंदर और दो होती हैं अर्रहीम के अंदर, छुट्टी है ना अर्रहमान अर्रहीम में, तो फिर बिगाड़ का सारा सामान इन दो अल्फाज में, जितनी रहमत है उतना ही बिगाड़ का सामान भी है। लेकिन फातिहा में जो बुनियादी रिश्ता है ना मेरा अल्लाह ताला के साथ, उसको सही यानी मीज़ान पर कायम किया गया है, तो फौरन अर्रहमान अर्रहीम के बाद क्या बात की, मालिक यौमिद्दीन, फौरन सीधा हो गया बंदा। मैंने कहा था ना मैं अपने मालिक से फेंस के बाहर मैं 5 साल इसी तरह छुट्टी गुजारी, 5 साल बाद मालिक मुझे बुलाता है, कहता है ये जो तुम बाहर खड़े हुए हो ना, हाँ मुझे पता है वो एक दफ़ा मैं आपने कहा था, लेकिन याद है मुझे वो भी क्या दिन थे, कहते मैंने वैसे उस दिन से रिकॉर्ड रखा हुआ है कि तुम कितनी दफ़ा बाहर गए थे, ये रिकॉर्ड है तुम्हारा, और आज तुम्हें उस सब की इकट्ठी सज़ा मिलेगी। अब बात समझ में आ रही है मालिक यौमिद्दीन क्या होता है? इंसान समझता है कि उसकी खुली छुट्टी है, लेकिन बाद में आगे जाके फौरन पकड़ हो रही है ना। अब ये एक अजीब सूरत है अल्लाह ताला की, इसके बारे में मैं जितना कहूँ कम है। आज सेशन होने ख़त्म होने से पहले दो बातें मैं आपके सामने रखूँगा मालिक यौमिद्दीन के बारे में और अभी जो कुछ पढ़ा है उसके बारे में। दो लफ्ज़ जो हैं वो एक दूसरे से बहुत करीब हैं इस सूरत में, एक रब और एक मालिक है ना, एक रब और एक मालिक, और उन दोनों के दरमियान दो अल्फाज हैं, एक तरफ रब है एक तरफ मालिक है, और दरमियान में दो कौन से लफ्ज़ हैं, अर्रहमान अर्रहीम। अब उन दोनों लफ्ज़ के बारे में सोचें, उनमें से एक आर्जी और एक मुस्तकिल है। आर्जी वाला कौन सा था, रहमान। और मुस्तकिल वाला कौन सा है?
1: अब ये अजीब
0: कलाम देखें अल्लाह का, रब्बिल आलमीन। इस जिंदगी के बारे में थी वो बात या अगली जिंदगी के बारे में? रब्बिल आलमीन इस जिंदगी के बारे में, और उससे करीब तीन तरीन लफ्ज है और रहमान जो इस जिंदगी के बारे में है। मालिक का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है किस किस जिंदगी के बारे में, और उसके करीब तरीन लफ्ज कौन सा है? अर्रहीम, जो हमेशा वाली रहमत, उससे करीब तरीन। क्या अजीब कलाम है, क्या तरतीब है इस कलाम की। रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक। अच्छा, शुरू रुबूबियत से रब, इंतहा मालिक से, और दरमियान में दोनों के क्या रहमत, यानी ये कभी मत समझना कि वो तुम्हारा, ये कभी मत भूलना कि वो तुम्हारा रब है और तुम्हारा मालिक है। लेकिन इन दोनों अल्फाज से डर लगने लगता है, लेकिन जब डर न लगने लगे तो उस जितना गहराई में इस रिश्ते के दरमियान में पहुंचोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? रहमत मिलेगी। इसके बाहर बाहर अथॉरिटी है और अंदर अंदर मोहब्बत है, रब मालिक रहमा। अजीब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन। अब जल्दी से इन तीन आयात को मैं कम से कम आज मुकम्मल करना चाह रहा हूँ। तो मालिक यौमिद्दीन के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँ, ये बहुत आसान है समझना। दीन से शुरू बात करते हैं। दीन अरबी में कहते हैं फैसले को, फैसले को। दीन अरबी में ऑल्सो उसको भी कहते हैं, किसी से आपका मामला हो रहा हो ना और उस मामले को मुकम्मल किया जाए, मेरा मामला तय हो गया, उसको भी दीन कहा जाता है। कमात दीन तो दान, जैसे तुम दूसरे से मामला करोगे वैसा तुम्हारे साथ मामला किया जाएगा, ये अरबी की कहावत है। अच्छा, अगर शदीद मोहब्बत का जिक्र है अर रहमान अर रहीम में तो उसका मुतजाद क्या होना चाहिए? नफरत, अजाब। अगर एक तरफ मोहब्बत है तो उसका मुतजाद अजाब होना चाहिए, लेकिन उसके मुतजाद में दीन का लफ्ज इस्तेमाल किया। और दीन क्या है? इंसाफ, फैसला। और फैसले से क्या, किस चीज की तरफ इशारा हो रहा है? इंसाफ की तरफ। तो अगर आप इस तरह समझ लें कि जो मोहब्बत है वो पॉजिटिव है, मुस्बत है, और नफरत क्या है? मनफी है, तो अदल कहां पे होगा, इंसाफ कहां पे होगा? सिफर, ना मोहब्बत ना नफरत। अल्लाह ताला ने इतनी, उसकी इतनी अजीम रहमत है, उसने नफरत का, अजाब का, गुस्से का जिक्र भी नहीं किया, मनफी का जिक्र भी नहीं किया। अगर ये पूरा चार्ट होता ना, तो एक तरफ पॉजिटिव में रहमान रहीम होता और दूसरी तरफ अजीज़ुल इंतकाम होता, अल मुअद्दिब कुछ होता, लेकिन वहां भी सिफर तक लेके मनफी तक नहीं लेके गए, सिर्फ दीन की बात की, यानी इंसाफ की बात की। और ये क्योंकि क्योंकि असल चीज जिससे हमें डरना है ना, वो अजाब नहीं है। फातिहा के मुताबिक असल चीज जिससे डराया जा रहा है वो इंसाफ है, वो इंसाफ है। इन्नहु मन सुइला यौमल क़ियामति फ़क़द हलक, एक रिवायत में आता है, जिससे उस दिन एक सवाल भी पूछ लिया गया वो तो बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला की रहमत उस दिन पता है क्या है? कुछ लोग होंगे जिनकी किताब उनके सीधे हाथ में होगी, अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह ताला हम सबको उसमें शामिल करें। अच्छा, जिसकी किताब उसकी सीधे हाथ में है ना, उसके बारे में क्या कहा है कि वो सिक्योरिटी गेट पे पहुंचता है और वहां अल्लाह ताला ने कहा है फसौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, उसके साथ आसान हिसाब किया जाएगा। आसान हिसाब से मुराद रिवायात से मिलता है कि फरिश्ते किताब खोलेंगे भी नहीं, गुजरने देंगे, जी हमें बताया आप जाएं, क्योंकि आपके कौन से हाथ में किताब है। अब आप नर्वस, आपके हाथ में तो किताब है, लेकिन आप कहें अगर आप ये पेज 130 पे जाएं तो उसमें एक हज है, वो जरूर देख लेना। जैसे आपका पेपर होता है ना, उसमें आपने बड़े उल्टे सीधे जवाब दिए होते हैं, लेकिन एक सही जवाब दिया होता है तो उसको आप पहले दिखाते हो टीचर को, ये वाला ये चेक करने जरा ये वाला। अच्छा, ये अगर पेज 503 पे जाए तो वहां एक शायद एक लैलतुल कदर थी मेरा ख्याल है उसमें एक, तो आप, लेकिन वो फरिश्ते क्या कह रहे हैं, आप जाओ आप खेल रहे निकलो कोई बात नहीं। अजीब सा। दूसरी तरफ कहा है किसी की किताब उन लोगों के उल्टे हाथ में होगी, अल्लाह हमें उनमें से ना करे, और उनकी पीठ के पीछे होगी, ऐसे होगी किताब, ना सिर्फ उल्टे हाथ में, पीछे। अब वो खुद भी नहीं देख सकता कितनी खराब है, उसको पता है खराब है, उसको ये भी नहीं पता है कितनी खराब है। अब वो भी आ रहा है सामने और उससे पूछा जा रहा है। अब यहां पर जब अद्दीन कहा है ना, तो इससे हमें इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि अल्लाह ताला उस दिन का भी मालिक है, जिस तरह वो रब इस दुनिया में है, उस दिन वो रब नहीं होगा, उस दिन वो क्या होगा, मालिक। तो क्या निकल गया रब के मायने में से, क्या निकाल लिया गया, तोहफे देने वाला, ख्याल करने वाला, कायम रखने वाला, जो उसके नरम नरम माने थे ना, वो सारे निकल गए और क्या रह गया, मालिक। उस दिन तो अथॉरिटी होगी, या तो रहमत होगी या फिर ये। और अगर आप इस तरह भी समझ लें कि रब के अंदर दो पहलू हैं, एक मोहब्बत वाला पहलू भी है रब के अंदर और एक इक्तदार वाला भी है, तो रब के अंदर वो जो मोहब्बत वाला पहलू है ना, वो अर्रहमान अर्रहीम में सामने आ गया, और रब के अंदर जो इक्तदार वाला पहलू है वो कहाँ, मालिक यौमिद्दीन में सामने आ गया। इन तीनों अल्फाज का आपस में एक जोड़ बन गया। आखिरी चीज है, और कि दो चीजें, यौम, यौम किसे कहते हैं, ओके, अल्लाह ताला ने अपने बारे में ऐसी बात की है जो कभी कोई अपने बारे में या किसी और के बारे में कह ही नहीं सकता। फरमाते हैं दिन का मालिक। देखें, आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते हो, किसी बकरी के मालिक हो सकते हो, किसी कंप्यूटर के मालिक हो सकते हो, लेकिन आप एक मिनट के मालिक नहीं हो सकते, आप एक सेकंड के मालिक नहीं हो सकते। वक्त की मिल्कियत मुमकिन नहीं है। एक चीज़ है जो आप जो भी कर, जितना भी पैसा आ जाए, जितनी भी जितना भी इक्तदार आ जाए, एक चीज़ है जो आप कभी भी ओन नहीं कर सकते, वो क्या है, वक्त। और वहां उसने उस एक चीज की मिल्कियत अपने सामने साबित की है, मालिकी यौम। और इससे बहुत अजीम बात सामने आ गई। अगर मैं कहूँ कि ये यहां पर एक थैला हो और मैं कहूँ ये थैला मेरा है, ये थैला मेरा है, या ये बैग मेरा है, तो उस बैग के अंदर जो कुछ भी है वो भी किसका है, मेरा ही हुआ ना। अगर अल्लाह उस दिन का मालिक है तो क्या बात निकली, उस दिन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उस सब का वो मालिक है। उस सब को एक्सप्लेन करने में बाकी कुरान है, लेकिन वो पूरी बात है कि मुहावरे में शामिल हो गई जब कहा मालिक यौम अद्दीन। सुभान अल्लाह। यानी बहुत थोड़े अल्फाज हैं फातिहा में, लेकिन पूरी पूरी कायनात उनके अंदर मुजमर है। आखिरी बात इसके मालिक के बारे में समझते हैं। मालिक असल में दो किराआत हैं हमारे नबी से मरवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालिक भी पढ़ा करते थे और मलिक भी पढ़ा करते थे। मालिक और क्या, मलिक। मालिक के मायने उर्दू में जैसे हैं वैसे अरबी में है, मालिक, गाड़ी का मालिक, बकरी का मालिक, ठीक है, मालिक। मलिक किसे कहते हैं बताएं, बादशाह को, बादशाह को। तो एक तरफ मालिक, दूसरी तरफ बादशाह, और दोनों के मायने यहां जरूरी हैं। समझ लें क्यों। बादशाह जो, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इस मेरे ये जूते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा मैं इस जूते का बादशाह हूं। मैं क्या कहूंगा, मैं जूते का मालिक हूं। मैं घर का बादशाह हूं या मालिक हूं, मालिक। मैं कंप्यूटर का बादशाह हूं, मालिक हूं, मालिक। लेकिन अगर कोई किसी के पास पूरा आइलैंड हो या पूरा मुल्क हो, वो कहे मैं इस आइलैंड का क्या हूं, क्या बात सामने आ रही है। बादशाह होते हैं बड़ी बड़ी सल्तनत के, और मालिक होते हैं छोटी छोटी चीज़ों के। जो बमुकाबिल छोटी चीज़ होती है उसके लिए मालिक होता है, जो बड़ी होती है उसके लिए क्या होता है, बादशाह। अब एक और फर्क भी समझ लें, अगर वो किसी मुल्क का बादशाह है, क्या तमाम छोटी छोटी चीज़ें जो उसकी सल्तनत में हो रही हैं उसमें उसकी नज़र है, हर बात पे, हर काम पे, हर किसी के सोने पे, हर किसी के उठने पे, क्या वो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। आपकी कंपनी है, आपकी अपनी कंपनी है, आपके 50 मुलाजिम हैं, क्या आप हर मुलाजिम की हर परफॉर्मेंस को, उसकी हर बात को, उसके हर एक्शन को कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं?
1: जितना आपका कंट्रोल बढ़ता है ना, जितनी सल्तनत बढ़ती है, उतना आपका छोटी छोटी चीज़ों पर कंट्रोल कम होता चला जाता है, ऐसा ही है ना? आपको किसी और को मैनेजमेंट देनी पड़ती है, छोटे काम मैं नहीं कर सकता, मेरे पास बड़े काम आ गए हैं, अब मैं छोटी चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता। मालिक का क्या है? अगर मैं कंप्यूटर का मालिक हूँ तो उसकी रिपेयर मैं खुद करूँगा, मैं घर का मालिक हूँ तो उसका दरवाज़ा मैं खुद फिक्स करूँगा, अगर मैं एक मुल्क का बादशाह हूँ उसका दरवाज़ा मैं खुद फिक्स नहीं करूँगा, मुझे तो पता मेरा दरवाज़ा ख़राब है। बड़ी चीज़ों के लिए बादशाह, छोटी चीज़ों के लिए क्या? मालिक। अब क़यामत के दिन में दो तरह के काम हो रहे हैं। क़यामत के दिन में सूरज और चाँद एक दूसरे में टकरा रहे हैं, क़यामत के दिन में दुनिया फैलाई जा रही है, क़यामत के दिन में सारी इंसानियत को कब्रों से निकाला जा रहा है, क़यामत के दिन में आसमान फट के खुल रहा है, क़यामत के दिन में सारे फरिश्ते उतर रहे हैं। ये तो बादशाह का काम है, ये बड़ा काम है। लेकिन क़यामत के दिन एक एक अमल का जायज़ा लिया जा रहा है कि नहीं? ला युगातिलु सगीरतन वला कबीरा, ये बादशाह का काम नहीं है, ये किसका काम है? मालिक का काम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत दो तरह पढ़ी, क्योंकि उस दिन कुछ चीज़ें मालिक से मुताल्लिक हैं और कुछ चीज़ें मलिक से मुताल्लिक हैं। समझ में आई बात? और दोनों को शामिल कर दिया मालिकियों में दीन में। आपके जाने से पहले हमने तीन आयात का मुताला किया है इस वक्त थोड़ा सा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम और मालिक यौमिद्दीन। मेरे नज़दीक क़ुरान में अल्लाह ताला का सबसे जामे तारुफ, कोई अगर कोई गैर मुस्लिम हो वो पूछे तुम किस खुदा की इबादत करते हो, तुम्हारा इस्लाम का खुदा कौन है, उसकी सबसे जामे तारीफ बस ये तीन आयात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन। पहली चीज़ जो मैं जान जो वो खुदा खुद चाहता है कि तुम जानो, जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं, वो हम्द का मुस्तहिक है, उसका नाम अल्लाह है, उससे रिश्ता तुम्हारा रब का है, और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तमाम सोसाइटीज का, तमाम इंसानियत का, अजल से अब तक अलआलमी, और उसको तुमसे ऐसी शदीद मोहब्बत है कि जिसका तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते, और ये भी तुम्हारे हाथ में है कि वो मोहब्बत तुम्हारे लिए हमेशा के लिए रहे, रहीम। लेकिन अगर तुमने उस मोहब्बत का फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो ये जान लो कि आज नहीं तो कल नहीं, एक दिन आ रहा है, एक कल आने वाला है, जिसमें फिर पूरा हिसाब लिया जाएगा, और एक बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी और छोटी छोटी चीज़ तक हिसाब लिया जाएगा मालिक यौमिद्दीन। एक पूरी बैलेंस्ड पिक्चर आ गई मेरे सामने, एक पूरी तस्वीर आ गई, जिसमें ना इस तरफ मैं सिर्फ अल्लाह ताला से डरूँ, या इस तरफ मैं सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से मुतमईन हो जाऊं और मुझे कोई फिक्र ही ना रहे, दोनों के दरमियान में एक मुकम्मल बैलेंस ये आ गया, ये बात आ गई अभी तक फातिहा में। और इसके बाद जहां से हम कल बात शुरू करेंगे इंशाल्लाह, वो होगी कि अगर ये कोई बात सुन ले तो वो किस नतीजे पे पहुंचेगा, यानी इस सारी बात का, ठीक है आपने ये बातें सीख ली अल्लाह के बारे में, सो व्हाट, फिर क्या, इसका नतीजा क्या निकलना चाहिए? अगली आयत असल में इन तीन आयत का नतीजा है, कि जो इन तीन बातों को, इन तीन आयत को समझ ले वो कहाँ तक पहुँचेगा, किस फैसले तक पहुँचेगा, और ख़ुद ही से पहुँचेगा। उससे कहा नहीं जाएगा इबादत करो इसलिए इबादत करो, ये नहीं कहा गया, कहा है इयाका नअबुदु, हम तेरी ही, सिर्फ तेरी ही इबादत करने को तैयार हैं, करने आए हैं, यानी हम अपने आप को वॉलंटियर कर रहे हैं, हम अपने आप को इस नतीजे पर पहुंचा रहे हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह यहाँ से आगे जो असल मौजज़ात हैं इस सूरत के, वो आगे आने वाले हैं इंशाल्लाह, उस पर कल मुलाकात होगी।
2: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan.
1: जहाँ पे basketball games और बड़े बड़े matches वगैरह होते हैं ना, उसने वो पूरा stadium book किया। वादे क्या कर रहा था? इस साल तुम्हारी सारी ख्वाहिशें जीसस पूरी कर देगा। क्या चाहिए तुम्हें?
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
4: Inspire FM.
3: Inspire 105.1 FM.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. That glad tidings for the one who finds in his book of deeds a great amount of istighfar.
6: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
7: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
8: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fasts and du'as. Ameen.
9: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
10: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
11: Juggling too much, trying to keep it all together without losing your mind, you deserve some me time. Join me, Neelam, on Mother's Planet every Friday at 10 o'clock on air at 105.1 FM or via our Inspire FM Facebook page. I'll be sharing tips and discussions with my guests on topics from kids, what to cook, health, well-being and lots more for all you special mums. That's Mother's Planet every Friday from 10 a.m. only at Inspire FM 105.1 FM.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
2: Last time on Akhri Mojza.
1: Usse kaha nahi jayega, ibadat karo. Isliye ibadat karo, ye nahi kaha gaya. Kaha iyyaka na'budu. Hum teri hi, sirf teri hi ibadat karne ko tayyar hain, karne aaye hain. Yani hum apne aap ko volunteer kar rahe hain. Hum apne aap ko is natije par pahuncha rahe hain.

उड़ गए, बिजनेस वाले उसके साथ बिजनेस नहीं कर रहे, बात उससे कोई नहीं कर रहा, उसे पागल कहा जा रहा है, उसको गालियां दी जा रही हैं, उसको सड़कों में मारा जा रहा है, उस पर थूका जा रहा है, सिर्फ एक फैसले की वजह से, इस्लाम कबूल करने की वजह से। यानी ये एक फैसला जिंदगी को आसान नहीं बना रहा, लगता है कुरान की रूह से कि जब कोई ये फैसला वाकई दिल से कर लेता है ना, तो उसकी ज़िंदगी आसान नहीं होती, उसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ये नतीजा हल्के दिल वाले लोगों के लिए नहीं है। अगर वाकई ये बात समझ में आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानुर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, तो सोच समझ के ये फैसला करना पड़ेगा, इयाका नाबुदू। और क्योंकि ये फैसला बहुत मुश्किल है और इसके साथ बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो फिर जो जहाँ जहाँ से इंसान को सपोर्ट मिलती थी ना दुनिया में, जिंदगी में, हो सकता है वो सारे रास्ते बंद हो जाएं। इसीलिए अब कहीं से सपोर्ट नहीं आएगी, तो जिसकी वजह से ये फैसला किया है उसी से सपोर्ट लेनी पड़ेगी। तो अब समझ में आया कि इसके साथ क्या बात जोड़ी हुई है, इयाका नअबुदु वा इयाका नस्ताईन, ये दोनों चीज़ें आपस में साथ इसीलिए जुड़ी हुई हैं क्योंकि ये फैसला आसान नहीं है। ये कहना आसान है, ये फैसला आसान नहीं है। अब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हम हर नमाज में इसी दावे की तरफ वापस आते हैं जो इस्लाम की बुनियाद है। एक तरह से जो किसी के मुसलमान होने का जो सफ़र है ना, उस सफ़र का खुलासा हम हर फातिहा में हर रकात में पढ़ते हैं। कहाँ से बात शुरू हुई थी, किस नतीजे पर हम पहुँचे, किस लिए हम मुसलमान हुए, इयाका नअबुदु। और मुसलमान हुए और ये इबादत हमने कबूल की, ये इबादत जब हमने खुद ही अपने तौर पर आकर कबूल की, तो फिर हमें इस बात का भी इतराफ़ करना पड़ा कि ये हमारे बस की बात नहीं है, इसमें बहुत सारी मुश्किलात होती हैं और इसमें बस अल्लाह ताला आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, वो इयाका नस्तईन। ठीक है, तो ये बात, अब इसके बारे में भी कुछ चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं। एक तरफ अल्लाह ने रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और मैंने कहा था रब ऐसा लफ्ज़ है जिसमें रिश्ता होता है, तो एक तरफ रब, दूसरी तरफ अब्द, दूसरी तरफ अब्द। अब अब्द के लिए यहाँ पर हमने देखा कि फ़ेल का इस्तेमाल हुआ है। पहले भी फ़ेल और इसम के बारे में बात हुई थी, थोड़ी सी दोहरा लेता हूँ ताकि आपका जहन फ्रेश हो जाए। फ़ेल में होता है माजी, हाल और मुस्तकबिल, और इसम में क्या होता है, हमेशगी, दवाम, हमेशा के लिए। अल्लाह ताला ने अपने लिए रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसम, लेकिन हमारे लिए हमने अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया इसम, हमने क्या इस्तेमाल किया, फ़ेल। फ़ेल में क्या होता है, या माजी या हाल या मुस्तकबिल, और फ़ेल ऐसी चीज़ है जब आप कर रहे होते हो तो होती है, जब नहीं कर रहे होते तो नहीं होती। जैसे खा रहा हूँ, खा रहा हूँ का मतलब है जब खा रहा हूँ तो हो रहा है, जब नहीं खा रहा तो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं कहूँ ये खाता पीता है, अब मैंने इसम इस्तेमाल किया ना, अब वो सो भी रहा है तो खाता पीता है, समझ रहे हैं बात। हमने जब अपने लिए फ़ेल इस्तेमाल किया तो हमने एक बात का हमने इतराफ़ किया यहाँ पर, और वो क्या है कि हमारी इबादत में ऊंच नीच होती है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी बिल्कुल ना होने के बराबर, कभी बहुत ज़्यादा। जैसे फ़ेल में भी ऊंच नीच होती है और फ़ेल में हमेशगी नहीं होती। हमारे लिए हमसे हमेशा की इबादत मुमकिन नहीं है। आप सो रहे हो तो इबादत नहीं कर रहे, आप काम कर रहे हो तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से कह दिया, हलाल कमा रहे हो तो काम भी कर रहे हो तो इबादत है। अपनी फैमिली के लिए आप ग्रोसरीज करने, दूध और ब्रेड वगैरह लेने जा रहे हो, हलाल रोज़ी से अपनी फैमिली के लिए लेने जा रहे हो, तो वो भी इबादत है। लेकिन उस वक्त आप शौरी तौर पर इबादत नहीं कर रहे, वो तो आप सिर्फ दूध लेने जा रहे थे, ब्रेड लेने जा रहे थे, रोटी ख़रीदने जा रहे थे, राइट। तो यहाँ पर इयाका नअबुदु में अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बहुत रहम किया है कि हमने ये दावा नहीं किया कि हम हमेशा हर लम्हे आपकी इबादत में होते हैं। ये दावा बहुत बड़ा हो जाता, उस पर हम में से कोई पूरा नहीं उतर सकता था। लेकिन हम आपकी इबादत करते हैं, हम आपकी इबादत कबूल करते हैं और करते हैं, इसमें थोड़ी रूम आ गई, करते भी हैं और कभी कुछ ढीले भी पड़ जाते हैं, फिर करते भी हैं, फिर कभी कोताही भी होती है, फिर करते भी हैं। और इस जो वसत है इसके अंदर, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी रहमत है। तो यह है इयाका नअबुदु में फ़ेल का इस्तेमाल। ओके, हाँ, अगर तुम इबादत करो कहा जाता, वो ये बात तो मैंने पहले कह दी थी, अगर कहा जाता करो इबादत
तो ये हमारा

0: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
1: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
3: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing the Hadith and the Duas.
4: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان Allah's Messenger one said Islam is based on the following five principles. One, to testify that none has the right to be worshipped but Allah and Muhammad is Allah's Messenger. Two, to offer the compulsory congregational prayers dutifully and perfectly. Third, to pay zakat, i.e. obligatory charity. Fourth, to perform hajj, i.e. pilgrimage to Mecca. Five, to observe fast during the month of Ramadan.
5: Allahumma ihdina fi man hadayt, wa'afina fi man afayt. وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا

0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
2: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by the world famous qari Mishari Rashid Ali Farsi from Kuwait.